ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएस डीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 सितंबर सन 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 हो रहे हैं। अब आरंभ होती है आज की हमारी प्रातःकालीन सभा।

0: 241.54 मीटर, अर्थात 1242 किलोहर्ट्स, डीटीएस जीआरएम 1233 किलोहर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार होंगे दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बदलती प्रौद्योगिकी, अनिश्चित परिस्थितियों और भौगोलिक चुनौतियों के बीच भारत को अपनी तैयारियों में भूसामरिक सोच और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की योजना को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। नई दिल्ली में भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन में श्री सिंह ने कहा कि भारत का लक्ष्य स्पष्ट है कि संकट आने से पहले ही हमारी तैयारियां इतनी मजबूत होनी चाहिए कि देश उससे निपटने के लिए तैयार रहे।
2: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद

0: सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के संदर्भ में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान की अनुचित टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा विषय है। रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा संबंधों को और मजबूत तथा विस्तारित करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के रक्षा उत्पादन सचिव दिनेश माहौर और कोरिया गणराज्य के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के अपर और उप मंत्री किम इल डोंग ने की। भारत ने परमाणु हथियार मुक्त दुनिया बनाने के लिए सभी परमाणु हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपने संकल्प को दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में परमाणु हथियारों के पूरी तरह खत्म किए जाने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में भारत का वक्तव्य दिया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई मित्र सुरक्षा और सम्मान शिविर आयोजित करेगा। सम्मान सफाई मित्रों का, संकल्प स्वच्छ भारत का विषय पर आयोजित इस शिविर का उद्देश्य सफाई मित्रों के अहम योगदान को पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। वहीं देश भर से शहरी तथा ग्रामीण स्थानीय निकाय और संबंधित विभाग इसमें वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी में इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और समकालीन उपलब्धियों को 99 स्मृति चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। इस संग्रह में आध्यात्मिक कलाकृतियां, पारंपरिक कला, खेल से संबंधित यादगार वस्तुएं और राज्य भर की प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के मॉडल शामिल हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत ने कल महिला 4x400 मीटर रिले टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कांस्य पदक जीता। वहीं 4x100 मीटर मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप व्यक्तिगत निशानेबाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता। पदक तालिका में भारत 6 स्वर्ण, 21 रजत, 25 कांस्य सहित 52 पदकों के साथ 10वें स्थान पर आ गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2 बजे शुरू होगा। नेपाल में पिछले सप्ताह हुई तेज बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। पानी का स्तर कम होने के बाद भी पश्चिम नेपाल में भारी तबाही देखने को मिली है। इधर मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के भीतरी इलाकों, केरलम, माहे, कारेकाल और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारेकल में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, आइए सुने कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में किसान भाइयों को उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाएं विषय पर ये जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, आज हम उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाने के बारे में चर्चा करेंगे। जमीन में उपलब्ध अधिकांश पोषक तत्वों का क्षय फसल उत्पादन द्वारा होता है, लेकिन विभिन्न फसलें एवं उनकी प्रजाति एक निश्चित मात्रा तक ही उनको ग्रहण करती हैं। कुछ फसलों में उर्वरक ग्रहण करने की क्षमता बहुत नगण्य होती है या उदासीन होती है। ऐसी फसलों में उर्वरक देने का लाभ

0: बहुत ही कम होता है। फसलों की जड़ प्रणाली भी उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाने से जुड़ी है। जिन फसलों की जड़ें मूसला होती हैं उनमें उर्वरक मिट्टी की सतह पर न देकर कुछ गहराई में देना चाहिए। छिछली जड़ वाली फसलों में उर्वरक मिट्टी के ऊपरी सतह पर दिए जाते हैं। यदि घनी फसल है तो उसमें कम मात्रा उर्वरक की डालने पर पौधों को कम मात्रा में उर्वरक मिल पाता है तथा ग्रहण करने में प्रतिस्पर्धा रहती है। यदि विरली फसल है और उर्वरक की अधिक मात्रा प्रयोग की गई है तो खाली स्थान पर पड़े उर्वरक का कोई उपयोग नहीं हो पाता। अतः इन बातों को भी ध्यान में रखना जरूरी है। एक वर्ष में यदि ज़्यादा फसलें लेते हैं तो अधिक एवं यदि एक वर्ष में कम फसलें लेते हैं तो कम उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। उर्वरकों के प्रभावशाली उपयोग में फसल चक्र का बहुत महत्व है। अच्छे फसल चक्र में दलहनी फसलों का समावेश होता है जिससे कम उर्वरक से भी अधिक पैदावार मिलती है। जिन फसलों में खरपतवार अधिक होते हैं उसमें उर्वरक का अधिकांश भाग खरपतवारों द्वारा उपयोग कर लिया जाता है जिससे मुख्य फसल को उर्वरक कम मात्रा में मिलते हैं तथा उपज कम हो जाती है और उर्वरकों का व्यापक नुकसान होता है। अतः उर्वरकों का पूरा फायदा लेने के लिए खरपतवारों को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके बाद ही उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। फसल की बुआई का समय भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान करता है। यदि समय पर फसल की बुआई करते हैं तो कम उर्वरक से भी अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत समय पर बुआई न करने से अधिक उर्वरकों के प्रयोग से भी अपेक्षित उपज प्राप्त नहीं हो पाती है। अधिक विलंब से बुआई करने पर उर्वरक का अधिकांश भाग फसल के लिए लाभकारी नहीं रहता है। खेत की तैयारी में उर्वरक के समुचित उपयोग का अपना महत्व है। अच्छी तैयार भूमि में फसलों की जड़ों का विकास ज़्यादा होता है तथा जल्दी ही जड़ें उर्वरक को घोल के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। इसी तरह यदि भूमि की तैयारी अच्छी तरह न की जाए तो पौधों की जड़ों का समुचित विकास नहीं हो पाता है तथा पर्याप्त उर्वरक का उपयोग फसलों के लिए नहीं हो पाता है और अधिकांश पोषक तत्व बेकार हो जाते हैं।
1: उर्वरकों की उपयोग क्षमता बढ़ाएं। खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर जानकारी सुन रहे थे। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार से। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्वच्छता ही सेवा है, स्वच्छता ही संस्कृति है, स्वच्छता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी। स्वच्छ रहेगा भारत तो समृद्ध रहेगा भारत। नदियों को रखना होगा साफ, ये हमारी सभ्यता और संस्कृति की पहचान है।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। कुछ ही पलों में सुनिए हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आराधना कार्यक्रम का आरंभ आइए करते हैं गणेश पुत्र गौरी पुत्र गणेश की वंदना से, जो हाथी जैसे विशाल काय हैं, जिसका तेज सूर्य की किरणों के समान है, जो विघ्नहारी हैं, मंगलकारी हैं और साथ ही विद्यायुक्त प्रबंधन के विलक्षण संयोजक भी हैं।

जिस तरह से थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी स्तुति बहुत से कष्टों और दुखों को दूर करती है। तो आइए करें हम स्वयं को उनको समर्पित।

प्रार्थना का अर्थ याचना नहीं है, ये तो आत्मा की पुकार है, जब दृढ़ विश्वास के साथ आकुल हृदय ईश्वर को पुकारता है। यही भावना प्रार्थना है।

भक्ति का आधार विश्वास है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तब तक आपको परमात्मा पर भी विश्वास नहीं होता।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में जिन कलाकारों को आपने सुना उनके नाम हम आपको बता दें, नरेंद्र चंचल, प्रीति सागर, ई हरिहरन और प्रदीप कुमार। आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। अब आइए सुने आज का हमारा विचार बिंदु कार्यक्रम। विषय है किताबों से दोस्ती, आलेख और वाचन स्वर अरुण पांडे का।
1: अब्राहम लिंकन ने कहा है कि किताबें आदमी को ये बताने के काम आती हैं कि उसके मूल विचार आखिरकार इतने नए भी नहीं हैं। सच में किताबों से गुजरना दुनिया के श्रेष्ठ अनुभवों से गुजरने जैसा है। इस दुनिया में किताबें पढ़ने से बड़ा सुख शायद ही कोई हो। तभी तो किताबों को सबसे अच्छा मित्र कहा जाता है। साहित्यकार निर्मल वर्मा भी ठीक ही कहते हैं, किताबें मन का शोक, दिल का डर या अभाव की हूक कम नहीं करती, सिर्फ सबकी आंख बचाकर चुपके से दुखते सिर के नीचे सिरहाना रख देती।

0: देती हैं। किताबें जीवन के विभिन्न चरणों में हमारी सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में साथ देती हैं। किताबें न सिर्फ हमें जानकारियां देती हैं, बल्कि हमारे अतीत के चलचित्र से भी रूबरू करवाती हैं। सफदर हाशमी कहते हैं, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सचमुच किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त के रूप में हमारे जीवन की सबसे अच्छी साथी होती हैं। जब भी हमें उनकी आवश्यकता होती है, वे हमारे लिए उपलब्ध होती हैं। किताबें हमारी आसपास की दुनिया को समझने, सही और गलत के बीच निर्णय लेने में हमारी मदद करती हैं। वे हमारे आदर्श मार्गदर्शक या सर्वकालिक शिक्षक के रूप में भी हमारे जीवन में शामिल होती हैं। किताबें पढ़ने से हमारे व्यक्तित्व में गुणात्मक परिवर्तन आता है। वे हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं, साथ ही यथासमय लक्ष्य प्राप्ति में भी मददगार हैं। हम में से कई लोगों को अपने खाली समय में या सोने के पहले किताबें पढ़ने की आदत होती है, क्योंकि पढ़ने से अवांछित तनाव पर काबू पाने में भी मदद मिलती है। यह हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जिसे हम सुकून की दुनिया कह सकते हैं। लोगों के विपरीत किताबें कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगती, बल्कि हमारे ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। विद्यार्थियों को निर्देशित करने का सबसे अच्छा तरीका है किताबों से दोस्ती करने की सलाह देना। कुछ महान व्यक्तियों की आत्मकथाओं वाली कई पुस्तकें हैं। ये किताबें विद्यार्थियों को उन लोगों के जीवन से प्रेरित होने में मदद कर सकती हैं, जिनसे वे अपने जीवन में प्रभावित रहते हैं, जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्य के प्रयोग, जिससे हम जीवन में सत्य, अहिंसा और अनुशासन सीख सकते हैं। रोजाना कुछ घंटों के लिए पढ़ना शब्दावली के साथ साथ भाषा कौशल के निर्माण में भी मददगार साबित होता है। किताबें पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, और किताबें एक नेक दिल इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करती हैं। नैतिकता और मूल्यों से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ना हमें अच्छे गुणों से समृद्ध करता है, और इस प्रकार हम समाज के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। पुस्तक पढ़ने के दौरान हमारी सभी इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। हम काल्पनिक दुनिया में अपने आप चले जाते हैं, हमारे मन में चित्र बनने लगते हैं। यही हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। ये हमें ध्यान केंद्रित करने और हमारी ध्यान केंद्रित करने की शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए किसी ने सही ही कहा है, कागज की ये महक ये नशा रूठने को है। किताबों से इश्क करने की ये आखिरी सदी है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्ययन से श्रेष्ठ विकल्प कोई नहीं है। इसलिए किताबें मानव की सबसे अच्छी दोस्त हैं, जो सदैव न सिर्फ परत दर परत जीवन के उतार चढ़ाव से उसे परिचित कराती हैं, बल्कि हर मुश्किल वक्त में एक दोस्त की भांति मनुष्य का साथ भी देती हैं।
1: किताबों से दोस्ती, विचार बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस विषय पर विचार। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब आइए सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज इस कार्यक्रम में डेंगू बुखार कारण, लक्षण और उपचार, इस विषय पर ये जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव।
2: अब हम बात ये करते हैं कि देखिए डेंगू में कैसे आपको पता चलेगा कि ये अब गंभीर रूप ले रहा है। यूजुअली देखिए पहले 1 से 3 दिनों तक सर दर्द, बदन दर्द, बुखार, ये चीजें होती हैं। 3 दिन बाद कई बार कुछ लोगों का तो बुखार उतर जाता है, लेकिन उसके बाद अचानक उनके बहुत सुस्ती होने लगे, उल्टी आने लगे और

0: बहुत कमजोरी लगने लगे, बहुत थकान लगने लगे, और अगर आंखों में या कहीं आपको चकत्ते आने लगे, शरीर में ऐसा लगे कि जैसे कि चकत्ते आ रहे हैं, तो फिर ये समझना चाहिए कि ये गंभीर डेंगू हो सकता है। और इस समय फिर आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ती है, आप डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे टाइम में फिर जांच कराते हैं लोग सीबीसी। सीबीसी कराने से पता चलता है कि अगर प्लेटलेट बहुत कम है तो यानी ये गंभीर समस्या बन रही है। ऐसे में कई बार ब्लड प्रेशर भी घटने लगता है, साथ में उल्टियां हो रही हैं। तो जब आप अस्पताल में जाएंगे, डॉक्टर आपको देखेगा तो आपको नॉर्मल सलाइन ये सब चीजें देगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। साथ में अगर उल्टी हो रही तो उल्टी का ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर प्लेटलेट घट रहा है, कई बार अगर प्लेटलेट बहुत ज्यादा घट जाता है, अगर प्लेटलेट किसी का भी 10,000 से नीचे चला जाता है, तो कई बार प्लेटलेट चढ़ाने की भी जरूरत पड़ती है। और डेंगू का इस समय अगर सही तरीके से देखभाल नहीं की गई और रक्त स्राव अगर बढ़ता चला गया शरीर के और अंगों में, जैसे कि गुर्दे में, आंतों में, पैनक्रियाज में, शरीर में, तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर के चांसेस होते हैं। और फिर ये पेशेंट्स ज्यादा ही अति गंभीर अवस्था में चले जाते हैं, और कई बार ऐसे ही पेशेंट के लिए डेंगू जानलेवा हो जाता है। देखिए, अगर लोग शुरू में ध्यान दें, एक तो जब भी बुखार आता है तो आप डॉक्टर से मिले, डॉक्टर आपको देखता है, आपकी जांच करता है। अगर जांच में पहले पहले 3 दिन NS1 एंटीजन कराया और अगर पॉजिटिव आ गया, उस समय आप आराम करिए, हरी साग सब्जियां, फल के जूस, तरल पदार्थ ये सब लेते रहेंगे तो, और खाने में जल्दीबाजी में कि जल्दी से ठीक हो जाए, दर्द की गंभीर वो दवाएं ना खाएं, ये नहीं लेंगे तो फिर प्लेटलेट नहीं घटेगा और धीरे धीरे आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब यहां गलती करते हैं लोग जल्दी ठीक होने के चक्कर में और इस तरीके की दवाओं का सेवन करते हैं, तो फिर ये प्लेटलेट घटने की संभावना बढ़ती है, फिर डेंगू आगे चल के आपको गंभीर रूप पकड़ लेता है। तो शुरुआती दौर में डॉक्टर से मिलना, जांच कराना और एहतियात बरतना, अगर ये आप बरतते हैं तो गंभीर डेंगू नहीं होने पाएगा। साथ में शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, खूब पानी पीते रहें, फल के जूस लेते रहें और ORS का सोल्यूशन पीते रहें और रेस्ट करेंगे। गंभीर रूप से डेंगू तभी होता है जब कुछ इस तरीके की गलतियां लोग करते हैं, जल्दीबाजी में इस तरीके का गलत जो करते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाए। खाने पीने में गलत चीजें खाएं, जैसे तली चीजें, मिर्च मसाला वाली चीजें ज्यादा खाने लगते हैं, तो इससे भी क्या होता है कि अगर आपका प्लेटलेट थोड़ा भी कम है तो उससे भी आपका जो है वो रक्त स्राव जगह जगह शरीर में होने लगता है और मरीज गंभीर डेंगू की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले सही टाइम पे आप डॉक्टर के पास पहुंचिए। मैंने बताया फर्स्ट एक से पहले दिन NS1 जांच करा गया, कंफर्म हो गया डेंगू है। 3 दिन बाद भी अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं तो 3 से 5 दिन के बीच में IgM करा लेगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ डेंगू की संभावना है। 5 दिन के बाद आप जा रहे हैं तो IgG करा के देख लेगा और उससे भी आइडिया लग जाए आप डेंगू है। तो ये बचाव की प्रक्रिया सही टाइम पे डॉक्टर से संपर्क करेंगे तो आप गंभीर डेंगू से बच सकते हैं। और अगर आपको जब भी डेंगू बुखार में उल्टी होने लगे, बार बार कोई चीज पचे नहीं, सुस्ती होने लगे, शरीर में बहुत कमजोरी होने लगे और आपको तरल पदार्थ या फल के जूस से सब पच नहीं रहा है, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए, जिससे डॉक्टर आपको अस्पताल में भर्ती करके आपको नॉर्मल सलाइन और जरूरी आपको जो ट्रीटमेंट है वो दे, जिससे फिर आप सुरक्षित हो सकते हैं। ऐसे इस टाइम पे जब भी डेंगू का बुखार हुआ और आपको उल्टियां बहुत हो रही हैं, शरीर में थकान हो रही है, चकत्ते आ रहे हैं, ऐसे में आप घर पे ना रहिए, डॉक्टर से जरूर संपर्क करिए।
1: डेंगू बुखार कारण लक्षण और उपचार स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर डॉक्टर अंबिका प्रसाद यादव से जानकारी सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज भाग संख्या 222 में गायक कलाकार हैं ए हरी।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए हम आपको देते हैं संक्षिप्त जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की। जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2026 में आज की मुख्य झलकियां प्रसारित होंगी रात 10 बजे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण होगा रात 10:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज दिन में 12:45 पर सुनिएगा गायन कलाकार होंगे देवाशीष दे। सुबह 7:31 पर सुनिएगा गिटार वादन कलाकार होंगे पंडित सलील भट्ट। सुगम संगीत के कार्यक्रम में दिन में 12:30 पर सुनिएगा गीत और भजन कलाकार होंगी नेहा चैटर्जी। रात 8 बजे इसी कार्यक्रम में चंद गजलें मनहर उदास की आवाजों में। गैर फिल्मी गीतों और गजलों का आनंद आप ले सकते हैं। रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा अंजुमन आर्ट ऑफ लिसनिंग। ये वार्ता सुनिएगा अंग्रेजी कार्यक्रम में शाम 7 बजे। वार्ताकार होंगी अनुश्री। शाम 6:30 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे बातचीत। विषय होगा वैज्ञानिक ढंग से सब्जियों का रखरखाव। इस विषय पर बातचीत होगी सुश्री डॉक्टर श्रेया पवार से। साथ में सुनिएगा लोकगीत कलाकार होंगी गीतांजलि मौर्य। गीतांजलि मौर्य के गाय लोकगीत आप दिन में 1:45 पर भी सुन सकते हैं। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह शाम 5:15 पर, जिसमें आज की बात मार्गदर्शन में वैकल्पिक विवाद समाधान और रोजगार की संभावनाएं विषय पर आपको जानकारी देंगे एडवोकेट अनुपम द्विवेदी। साथ यूटीआई इतिहास में आज का दिन सूचना और जानकारी के साथ साथ फिल्म संगीत कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम लेकर आएंगे। दोपहर 2:30 पर गृहलक्ष्मी में बहनें सुनेंगी बातचीत अल्पसंख्यक के कल्याण हेतु 15 सूत्रीय कार्यक्रम पर। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा दिन में 12 बजे और ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत कार्यक्रम हम लेकर आएंगे झनकार सुबह 10 बजे। मधुरिमा सुबह 8:45 पर और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7 बजे से सुनिए गुड मॉर्निंग बनारस। कार्यक्रम विवरण में ये थी संक्षिप्त जानकारी। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: EM आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् परिवर्तमान प्रौद्योगिक्या अनिश्चिततया भौगोलिक सामीप्येन च उद्भूतानां समाह्वानानां मध्ये भारतस्य सज्जतायां भूरणनीतिक चिन्तनम् आकस्मिक परिस्थितीनां कृते योजना निर्माणं च अभिन्नौ अंगौ भवितव्यौ। ह्यः नवदिल्ल्यां भारतीय नौसेना सैन्याध्यक्ष सम्मेलनं संबोधयन् श्रीसिंहः उक्तवान् यत् देशस्य लक्ष्यं स्पष्टमस्ति। संकटस्य अस्माकं द्वारं प्राप्तेः पूर्वमेव तम् अवरोद्धुं सज्जतापूर्णा भवेत्। मन्त्रिणा उक्तं यत् प्रवर्तमानं ऊर्जा सुरक्षा अभियानं पुनरपि देशस्य ऊर्जापूर्तिव्यवस्थायाः राष्ट्रियहितानां च संरक्षणे भारतीय नौसेनायाः व्यावसायिक दक्षतां परिचालन सज्जतां च प्रदर्शितवान् अस्ति। निर्वाचनायोगेन युवमतदातॄणाम् अधिकतम पञ्जीकरणस्योद्देश्येन दिल्लीस्थेषु विभिन्नेषु महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च विशेष शिबिराणि आयोजितानि सन्ति। आयोगेन सूचितं यत् एतानि शिबिराणि अद्य पर्यन्तं प्रवर्तिष्यन्ति। आयोगेन उक्तं यत् बहुसंख्यकाः विद्यार्थिनः विशेष

घड़ी में बजे हैं ठीक सात, बनारस का मौसम और आपका साथ दोनों ही अपने आप में एक एहसास है। तो नमस्कार बनारस, बाबा विश्वनाथ किस नगरी में आज सुबह की जो हवा चल रही है ना, आहा, उसका एक अलग ही मिजाज है। दोस्तों, गंगा किनारे बसे हमारे इस पवित्र शहर की सुबह हमेशा खास होती है, लेकिन दोस्तों आज की सुबह में तो एक अलग ही ठहराव है, आस्था और श्रद्धा है। मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर रिचा और आप सुन रहे हैं अपना मन पसंद शो गुड मॉर्निंग बनारस।

तो दोस्तों, बनारस की गलियों से लेकर घाटों तक आज की हवा में एक अलौकिक शांति है। कारण, क्योंकि पितृपक्ष जो चल रहा है। दोस्तों, ये वो दिन है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनका आभार जताते हैं। आपको पता है दोस्तों, घाटों पर जल तर्पण चल रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के महत्व, इसकी कथाओं और काशी से इसके गहरे जुड़ाव पर, आपके अपने फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस में।

तो दोस्तों, आज बात चल रही है पितृपक्ष की। दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये दिन इतना खास क्यों है। दोस्तों, सनातन परंपरा में माना जाता है कि हमारे पूर्वज भले ही इस भौतिक संसार को छोड़ चुके हों, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। दोस्तों, पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं है, यह ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता जताने का अवसर है।

दोस्तों, हम अपने पूर्वजों के प्रति जो कर्ज यानी कि पितृ ऋण रखते हैं, उन्हें याद करके, दान पुण्य करके और तर्पण देकर हम उन्हें नमन करते हैं। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हमारी काशी तो मोक्ष की नगरी है। यहाँ पिशाच मोचन कुंड और गंगा घाटों पर श्रद्धा से श्राद्ध करने का महत्व ही कुछ अलग है। दोस्तों, आप जानते हैं कि पितृपक्ष की शुरुआत की पौराणिक कथा क्या है? आइए हम बताते हैं। तो दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब दानवीर कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उन्हें खाने में सोना और गहने दिए गए। तो कर्ण ने पूछा कि मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? तब देवताओं के राजा इंद्रदेव ने बताया कि कर्ण, तुमने जीवन भर सोना चांदी दान किया, लेकिन कर्ण, कभी तुमने अपने पूर्वजों को अन्न या जल का दान नहीं दिया। तब कुंती पुत्र कर्ण ने कहा कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में पता ही नहीं था। तब देवताओं के राजा इंद्रदेव ने उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा ताकि वे अपने पितरों का तर्पण कर सके और अन्न जल दान कर सके। दोस्तों, यही वो दिन है जिसे आज हम पितृपक्ष के रूप में मनाते हैं।

तो दोस्तों, बात जब पितृपक्ष की हो और बनारस का नाम ना आए, ऐसा भला हो सकता है क्या? नहीं ना। तो दोस्तों, हमारे बनारस में पिशाच मोचन तीर्थ का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार यहाँ श्राद्ध और विमल कूप में तर्पण करने से अकाल मृत्यु को प्राप्त आत्माओं को भी मुक्ति मिल जाती है।

दोस्तों, काशी का कोना कोना मोक्षदायिनी गंगा से जुड़ा है। दोस्तों, अगर आप आज घाटों की तरफ जाएंगे तो आपको दूर दूर से आए लोग अपने पितरों की शांति के लिए

प्रार्थना करते दिखेंगे। दोस्तों, श्रद्धा का सही अर्थ क्या है? तो चलो बताओ जल्दी। दोस्तों, आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में यदि आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो शास्त्रीय मान्यताओं में साफ साफ लिखा है कि अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो केवल श्रद्धा ही काफी है। श्रद्धा से किया गया कार्य ही श्राद्ध है। दोस्तों, अगर आप किसी जरूरतमंद को भोजन करा देते हैं, पंछियों को दाना डालते हैं, गाय को रोटी देते हैं या श्वान को भोजन कराते हैं, जिसे पंचबलि भोग कहा जाता है, तो यह भी पितरों तक पहुंचता है। दोस्तों, इस पितृ पक्ष में सिर्फ कर्मकांड ना करें, बल्कि किसी की मदद करके सच्चे अर्थों में अपने पूर्वजों को याद करें। वैसे एक बात कहें दोस्तों, बड़ों का सम्मान ही सबसे बड़ी पूजा है। हम तो दोस्तों, मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर चा और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की सुबह आपके मन में एक नई शांति लेकर आई होगी। तो आज का मूल मंत्र ये है कि अपने पूर्वजों को नमन करें, पंछियों को पानी दें और बनारस की खूबसूरती को महसूस करें गुड मॉर्निंग बनारस में।

वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन आपकी वाणी आकाशवाणी वाराणसी। दोस्तों, आज 30 सितंबर 2026 दिन है बुधवार का। तो चलिए करते हैं शुरुआत, देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास।

दोस्तों, दुनिया भर में इंटरनेट का 99% डेटा समुद्र के नीचे बिछे केबलों के जरिए चलता है। पिछले 10 सालों तक चीन के पास मौजूद दक्षिण चीन सागर और लाल सागर इसके मुख्य रास्ते थे, लेकिन युद्ध तनाव, लाल फीताशाही के कारण अब कंपनियां इन रास्तों से बच रही हैं। दोस्तों, नए इंटरनेट केबल सीधे हिंद महासागर से बिछाए जा रहे हैं ताकि AI जैसी सेवाओं के लिए बिना रुकावट तेज इंटरनेट मिल सके। इस बड़े बदलाव से भारत को बड़ा फायदा हो रहा है और मुंबई के बाद अब चेन्नई भी दुनिया का नया बड़ा इंटरनेट हब बन रहा है।

दोस्तों, भारत एशिया में सुरक्षित डिजिटल हब बनकर उभर रहा है। लक्षद्वीप सागर का केबल कॉरिडोर के रूप में महत्व बढ़ने से भारत को हिंद महासागर में नई रणनीतिक बढ़त मिलेगी, साथ ही वैश्विक टेक कंपनियों के भारी निवेश और बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी के अवसर भी तेजी से बढ़ेंगे।

एशियन गेम्स 2026 भारत ने प्रतियोगिताओं के दौरान लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदकों की संख्या 50 के पार पहुंचा दी है, जिसमें रिले टीम और अन्य एथलीटों का स्वर्ण पदक शामिल है। दोस्तों, मेटा का सबसे चर्चित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप को लेकर सोशल मीडिया में जो चर्चा है, उसके अनुसार अब मेटा की ओर से संदेश भेजने के लिए 14 पैसे चार्ज करने की तैयारी है। जल्द ही इसे लागू करने के बाद हर संदेश के साथ उपभोक्ता की जेब से वसूली करने की तैयारी है। लखीमपुर खीरी में बलरामपुर चीनी मिल की कुंभी पीएलए पॉलीलैक्टिक एसिड डिवीजन की भारत में

पहला ऐसा प्लांट बन रहा है जहां चीनी और उसके वेस्ट मटेरियल से प्लास्टिक बनाया जाएगा। इस प्लांट ने बने प्लास्टिक से ज्यादातर मात्रा में जेसस बोर्ड बनेगा, जिसका उपयोग प्राय हर जगह कार्यालय या घरों में किया जा रहा है।

दोस्तों, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 में देसी विदेशी खरीदारों को बनारसी पान, तिरंगी बर्फी, लौंगलता खूब पसंद आ रहे हैं। 100 किलोग्राम से ज़्यादा लौंगलता और तिरंगी बर्फी की बिक्री हो गई है। तो ये था देश दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। और आइए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और देखते हैं आज के दिन में क्या है खास। तो चलो बनारस, थोड़ा हिस्ट्री का तड़का लगा लेते हैं।

दोस्तों, आज है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। भाषा पेशेवरों और अनुवादकों के योगदान को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय पॉडकास्ट दिवस भी है। डिजिटल ऑडियो और पॉडकास्टिंग के प्रभाव को सराहने के लिए यह दिन तय किया गया था। दोस्तों, आज ही के दिन प्रख्यात पार्श्व गायक मन्ना डे को वर्ष 2007 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया था। दोस्तों, आज ही के दिन भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक सन 1922 में ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन दोस्तों, प्रसिद्ध भारतीय गायक शान का जन्मदिन भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हो गई, अभी आपसे और भी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

तो दोस्तों, इसी के साथ गुड मॉर्निंग बनारस का आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है। तो दीजिए अपनी रेडियो हम सफर रिचा को अनुमति। आज का ये सफर आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारी मेल आईडी

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। सुबह के 7:18 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, कहा आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। प्रदेश की 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद सीटों के लिए शुरू हुआ नामांकन, भाजपा ने जारी की 6 MLC उम्मीदवारों की सूची। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बेहतर कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश को दी नई पहचान। और अयोध्या में 7 नवंबर को आयोजित होगा 10वां दीपोत्सव, जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर तैयार की कार्य योजना। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सोमवार की देर रात तमकुही राज में नारायणी नदी के AP तटबंध का कुछ हिस्सा टूटने के बाद जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि से कई क्षेत्र बाढ़ की चपेट में आ गए थे। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री बांटी और भरोसा दिलाया कि आपदा की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव के लिए NDRF और SDRF की दो दो टीमें तथा PAC की 4 यूनिट तैनात की गई है। पीड़ित

0: परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
1: सरकार ने यह भी तय किया है कि हर पीड़ित परिवार को सहायता भी देंगे। अगर कहीं जनहानि हुई है आपदा की श्रेणी में, उसको लेकर के उस परिवार को भी तत्काल धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। जनहानि पर 4 लाख रुपए की सहायता, अगर किसी परिवार का मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है, पूरी तरह नष्ट हो गया है, तो उन्हें प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास उपलब्ध करवाने के लिए मैंने आदेश दिया कि तत्काल उस परिवार को एक नया आवास उपलब्ध करवाएं।
0: मुख्यमंत्री ने फसलों के नुकसान का सर्वे कर पीड़ित किसानों को 10 दिनों के भीतर मुआवजा देने के निर्देश दिए। साथ ही बाढ़ से प्रभावित सड़कों और तटबंध की मरम्मत कराने को भी कहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। वह आज गोरखपुर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 57वीं और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित साप्ताहिक श्रद्धांजलि समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के प्रतिष्ठित साधु संत और धर्माचार्य हिस्सा ले रहे हैं। श्री योगी ने कल गोरखनाथ मंदिर में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में गोरक्षपीठ के महान संतों के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री ने कहा कि महापुरुषों की योजनाएं और कार्य भविष्य के लिए एक मजबूत नींव के रूप में काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों और विधान परिषद के खंड स्नातक के 5 तथा खंड शिक्षक के 6 निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। दोनों चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है। राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर जबकि विधान परिषद के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें वाराणसी स्नातक क्षेत्र से केदारनाथ सिंह और वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रमोद कुमार मिश्र को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं प्रयागराज झांसी से अशोक कुमार राठौर, मेरठ स्नातक क्षेत्र से दिनेश गोयल, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी और गोरखपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ध्रुव कुमार त्रिपाठी को उम्मीदवार घोषित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह कल ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे, हवाई संपर्क और औद्योगिक विकास में हुए बदलावों ने उत्तर प्रदेश को नई आर्थिक पहचान दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस आयोजन ने प्रदेश के उद्यमियों, निर्यातकों, कारीगरों, प्रदर्शकों और देश विदेश के खरीदारों को एक मंच पर लाने का काम किया है।
2: किसी मेले में 10-15 लाख लोग आते हों 5 दिन में, ये अभूतपूर्व सफलता बताएगा। लगभग 20,000 करोड़ का B2B हुआ और आज एक्सपोर्ट 2 लाख से ऊपर करोड़ का चला गया उत्तर प्रदेश का, ये भी इस ट्रेड की सफलता है।
0: रेल मंत्रालय ने मेरठ को खुर्जा और सहारनपुर से जोड़ने वाली 2 मेमू सेवा शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। खुर्जा मेरठ सिटी मेमू ट्रेन खुर्जा से दोपहर 1:15 पर चलेगी और शाम 5:20 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। वहीं सहारनपुर मेरठ सिटी मेमू ट्रेन सहारनपुर से सुबह 5:50 पर चलेगी और 8:10 पर मेरठ सिटी पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से यह समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से इस संकल्प को कैसे

0: वास्तविकता में बदला गया।
1: 2014 में शुरू की गई प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि पारदर्शिता के साथ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों के लिए भेजे गए हर एक रुपए में से केवल 15 पैसे ही लाभार्थियों तक पहुँचते हैं। 2014 के बाद केंद्र सरकार ने इस व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुँचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
2: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है।

0: व्यवस्था को बदलते हुए यह सुनिश्चित किया कि डीबीटी के माध्यम से सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आज सैकड़ों सरकारी योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे लोगों के बैंक खातों में पहुंच रहा है।
1: हम भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं। आज सरकार की सैकड़ों स्कीम्स के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है। इसमें सिस्टम से लीकेज बंद हुई है।
0: इस साल अगस्त तक डीबीटी के माध्यम से 320 सरकारी योजनाओं के तहत 53 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लाभार्थियों को सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। डीबीटी ने बिचौलियों की भूमिका को खत्म कर सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत किया है। भानु के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अयोध्या में 3 दिवसीय 10वें दीपोत्सव की शुरुआत 6 नवम्बर को होगी। वहां के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि मुख्य दीपोत्सव 7 नवंबर को मनाया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि दीपोत्सव के संबंध में सभी विभागों के साथ बैठक कर कार्ययोजना तैयार की गई है।
3: दीपोत्सव इस बार 7 नवंबर को होना है, दिवाली के एक दिन पहले हर साल होता है। बड़े स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। इस पर्यटन महोदय द्वारा इसका असली भ्रमण और समीक्षा की गई थी। मेरे द्वारा और कमिश्नर सर के द्वारा भी इसका एक बार रिव्यू किया गया है और लगातार हमारी जो टीम है वो असली भ्रमण कर रही है, सभी डिपार्टमेंट से संवाद कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़े स्केल का प्रोग्राम है जिसमें जनपद के सभी विभागों के साथ साथ शासन और डायरेक्टरेट लेवल के सभी विभाग इसमें लगते हैं। तमाम सारे टेंडर की प्रक्रियाएं होती है जिसके माध्यम से यहाँ पर साथ साथ जाके कार्य होते हैं, विभिन्न कार्यक्रम आयोजित, वो सारी चीजें एक साथ चल रही हैं और वो फाइनल रूप देने के लिए सारी तैयारियां हो गई हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से दीपोत्सव इस वर्ष भी मनाया जाएगा।
2: झांसी के मऊ रानी क्षेत्र के देवरी सिंहपुरा में सुखनई नदी में डूबने से कल एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को जल तर्पण करने के लिए नदी के किनारे गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण, कहा आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार। प्रदेश की 10 राज्यसभा और 11 विधान परिषद सीटों के लिए शुरू हुआ नामांकन, भाजपा ने जारी की 6 MLC उम्मीदवारों की सूची। ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, कहा बेहतर कानून व्यवस्था और औद्योगिक विकास ने उत्तर प्रदेश को दी नई पहचान। और अयोध्या में 7 नवंबर को आयोजित होगा 10वां दीपोत्सव, जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर तैयार की कार्ययोजना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडिया वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुने कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं पंडित सलील भट्ट, राग है चारू केशी। आपके साथ तबले पर

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गिटार वादन। कलाकार थे पंडित सलील भट्ट। राग था चारू केसी। आपके साथ तबले पर संगति पंडित अभिषेक मिश्रा की थी। शास्त्रीय संगीत का आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह की 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात दिल्ली केंद्र से बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्करे तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और उत्तर पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मौजूदा वर्ष को भारतीय नौसेना के लिए ऐतिहासिक वर्ष बताया है। इस वर्ष 18 युद्धपोतों को नौसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना है। नई दिल्ली में कल भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन 2026 के दूसरे संस्करण में श्री सिंह ने कहा कि ये घटनाक्रम भारतीय नौसेना के घरेलू जहाज निर्माण तंत्र की बढ़ती परिपक्वता को दर्शाते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में नौसेना के प्रयासों को दर्शाते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत विनिर्माण तंत्र अब वैश्विक मानकों को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए युद्धपोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा मंत्री ने मौजूदा प्रणालियों के महत्व को पहचानते हुए भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली के महत्वपूर्ण उन्नयन का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समुद्री यातायात की बढ़ती मात्रा और जटिलता के लिए उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट।

0: रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ने देश की ऊर्जा आपूर्ति लाइनों और राष्ट्रीय हितों की रक्षा में भारतीय नौसेना की पेशेवर क्षमता और परिचालन तत्परता को एक बार फिर साबित किया है। उन्होंने कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में फर्स्ट रिसार और भरोसेमंद सहयोगी के रूप में अपनी भूमिका लगातार मजबूत कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि दक्षिण चीन सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर में भारतीय युद्धपोतों की तैनाती देश की ब्लू वाटर नौसेना क्षमता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नौसेना वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक आधार के रूप में कार्य कर रही है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स सहयोग पर भारत कोरिया गणराज्य की 10वीं संयुक्त समिति JCM की बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने रक्षा उद्योग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में जारी द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमरीका में G20 विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के निमंत्रण पर आयोजित की जा रही है। अमेरिका की यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने अमेरिका के समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भी चर्चा करेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि बातचीत इस वर्ष 7 फरवरी को जारी संयुक्त बयान के अनुरूप अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने पर केंद्रित होगी। श्री गोयल 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे G20 बैठक में भारत विश्व व्यापार संगठन को केंद्र में रखते हुए नियम आधारित खुले, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था को मजबूत करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल विनिर्माण, उपभोक्ता वस्तुओं, कृषि व्यवसाय, खुदरा और प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख अमेरिका की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। भारत ने परमाणु हथियारों से मुक्त और सार्वभौमिक, गैर भेदभावपूर्ण और सत्यापन योग्य निशस्त्रीकरण के माध्यम से परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी देशों के मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में भारत का ये बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि श्री जॉर्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में डर्बन घोषणा और कार्य योजना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एक बैठक में नस्लीय भेदभाव, विदेशियों के प्रति नफरत और संबंधित असहिष्णुता से लड़ने के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। गृहमंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर रहेंगे और जालंधर में नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। इन यात्राओं का मुख्य केंद्र पंजाब के सामने मौजूद 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। इनमें मादक पदार्थों के बढ़ते दुरुपयोग, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो आज भी जारी है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दृष्टि को जल सुधारों के माध्यम से साकार किया गया है।
2: दशकों तक गुजरात बार बार पड़ने वाले सूखे और भीषण जल संकट की त्रासदी झेलता रहा। इस परिस्थिति को बदलते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल प्रबंधन को एक स्थायी व्यवस्था के रूप में स्थापित किया। चेक डैम, खेत तालाब, रिचार्ज वेल और नहरों के एक विशाल नेटवर्क की योजना तैयार की गई। सुजलाम सुफलाम जैसी दूरगामी पहल के जरिए बाढ़ के अधिशेष जल को 332 किलोमीटर से अधिक की लंबी नहरों के माध्यम से उत्तरी गुजरात के सैकड़ों गांवों तक पहुंचाया गया। वहीं ऐतिहासिक सौनी योजना के तहत नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के जलाशयों तक पहुंचाकर 10 लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ा गया। राज्य भर में 1.85 लाख से अधिक चेक डैम बनाए गए। जल संकट से जल सुरक्षा की इस अभूतपूर्व सफर को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: मैंने दशकों से लटके पड़े सरदार सरोवर डैम का काम पूरा करवाया। गुजरात में सौनी योजना शुरू हुई।

0: जहां पानी की अधिकता थी वहां से पानी जल संकट वाले इलाकों में पहुंचाया गया। आज गुजरात में हुए प्रयासों के परिणाम सारी दुनिया के सामने हैं।
1: जल सुरक्षा के इस विस्तृत तंत्र ने राज्य के लाखों किसानों के जीवन में स्थायित्व और आर्थिक समृद्धि का संचार किया है। सौनी योजना से अपने जीवन और खेती में आए सकारात्मक बदलाव को बयां करते हुए अमरेली जिले की महिला किसान लाभुबेन सरोला कहती है,
2: सौनी योजना के आने से हमारे गांव में नहर आई। पानी का इस्तेमाल करके मैंने मूंगफली और कपास जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है और कमजोर सालों में भी हमने अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। इसीलिए हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।
1: आज गुजरात का यह दूरदर्शी जल प्रबंधन मॉडल पूरे देश के लिए जल संरक्षण, कृषि समृद्धि और सतत विकास की एक बेहतरीन मिसाल बना हुआ है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2018 में असम में बोगी पुल का उद्घाटन किया। ये पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है।
4: बोगीबेल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। 4.94 किलोमीटर लंबा यह दो स्तरीय रेल सह सड़क पुल भारत में अपनी तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। यद्यपि इसकी आधारशिला वर्ष 1997 में तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने रखी थी, लेकिन कई वर्षों तक इसका निर्माण कार्य धीमी गति से चलता रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग चिकित्सा, आपात स्थितियों, शिक्षा तथा अन्य कार्यों के लिए कुछ ही मिनटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: निर्वाचन आयोग युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दिल्ली के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष नामांकन शिविर चला रहा है। एक रिपोर्ट।
5: अगले महीने की 4 और 11 तारीख को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इस वर्ष 1 अक्टूबर या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नए आवेदक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म 6 में आवेदन करें। निर्वाचन आयोग ने बताया कि अब तक दिल्ली में 400,000 से अधिक सुनवाइयां की जा चुकी हैं। आयोग ने यह भी कहा कि जिन मतदाताओं को तार्किक विसंगतियों से संबंधित नोटिस मिले हैं उन्हें बूथ लेवल अधिकारी सहायता प्रदान करेंगे। बूथ लेवल अधिकारी ऐसे मतदाताओं के घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अगले महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 4 दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
6: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट @AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के पहाड़ी इलाकों में कल देर शाम सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का एक शीर्ष आतंकवादी मारा गया। भारतीय सेना की कश्मीर स्थित चिनार कोर ने मारे गए आतंकवादी की पहचान उजागर नहीं की, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पहचान सुलेमान शाह उर्फ मूसा के रूप में की। मूसा पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। एशियाई खेल 2026 में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल मैच में चीन को 238-234 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रथिका प्रदीप की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 234-233 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। भारत ने हांगझोउ में आयोजित 2023 एशियाई खेलों में महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। भारत प्रतियोगिता में अब 7 स्वर्ण, 21 रजत और 25 कांस्य पदकों सहित कुल 53 पदकों के साथ 9वें स्थान पर है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज तटीय आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की

0: की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज आसमान साफ रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हाल में मजबूत होते रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तल्ख टिप्पणी अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, अमेरिका ने आतंकवाद पर भारत की चिंता नहीं समझी तो रिश्तों पर असर। इसी खबर पर दैनिक जागरण के विदेश पन्ने की सुर्खी है, पाकिस्तान से गलबहियां पर अमेरिका से बोले जयशंकर, आतंकवाद पर कोई सहानुभूति नहीं, इससे रिश्ते प्रभावित होंगे। दैनिक जागरण ने कैंसर की दवाओं पर अस्पतालों द्वारा 10 गुना तक कीमत बढ़ाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी प्रकाशित की है। अस्पतालों में 10 गुना कीमतों पर दवा बेचना नरसंहार। राजधानी में यातायात को नई रफ्तार देने के लिए बनाए गए बारापोला फेज 3 एलिवेटेड कॉरिडोर और मुकरबा चौक अंडरपास के उद्घाटन की भी खबर कई समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान ने सौगात शीर्षक से लिखा है, मयूर विहार से एम्स तक बिना रुके सफर करें। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, मयूर विहार से एम्स की यात्रा 15 मिनट में। राजस्थान पत्रिका ने बदलाव शीर्षक से खबर छापी है, सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक जारी, जाट सिख प्रतिरोध भी नवी के कोर्स में शामिल। लिखा, एनसीईआरटी की नई किताब में मेवाड़ के रणबांकुरों की कहानी। पत्र ने कोलकाता में होने वाले एक भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का भी चित्र प्रकाशित किया है। पंडाल में 1000 किलोग्राम पुराने अखबारों से पंडाल से सजाएगा।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नौसेना इस वर्ष अपने बेड़े में रिकॉर्ड 18 युद्धपोत शामिल करेगी। ये इतिहास में एक वर्ष का सबसे बड़ा सैन्य बल विस्तार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। भारत ने विश्व को परमाणु हथियार मुक्त बनाने और सभी परमाणु हथियारों को समाप्त करने की प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष आतंकवादी ढेर। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरलम और पूर्वी राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। एशियाई खेलों में भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने स्वर्ण पदक जीता और भारत वेस्टइंडीज के बीच दूसरा एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज गुवाहाटी में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single-year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyaba terrorist killed in encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecast heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Keralam and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And now the news in detail. Defence Minister Rajnath Singh has described 2026 as a historic year for the Indian Navy, with plans for the induction or commissioning of 18 warships during the year. Addressing the second edition of the Indian Navy's Biannual Commanders Conference 2026 in New Delhi, Mr. Singh said that the developments reflected the growing maturity of India's domestic naval shipbuilding ecosystem, underlining the Navy's efforts towards achieving self-reliance in the defence sector. The Defence Minister emphasised that the Indian Navy's warship production ecosystem is now meeting global benchmarks. He said the warships commissioned recently contain over 75% indigenous content. The Minister called for a significant upgrade of India's maritime surveillance architecture, recognising the importance of existing systems. He added that the growing volume and complexity of maritime traffic

0: and Kiran Pahal, who ran a great race in the women's 4x400-meter relay to give India its first athletics gold at the 2026 Asian Games, appears across all front pages this morning. The Pioneer headlines, Amit Shah opens Barapula Phase 3, promises smoother east-south link. U.S. forces to leave Iraq after two-plus decades today, headlines Hindustan Times. India-U.S. FTA will improve ties, says EAM. S. Jaishankar notes the Asian age. Air India to resume direct Delhi-Tel Aviv flights from December 1, informs the Pioneer. And finally, a Financial Express article titled The Battle for the Screen Time informs brands are working to walk the scrolling Gen Z audience from discovery to fandom to purchase without losing them to a rival. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Navy to induct record 18 warships in 2026, marking largest single-year force expansion in its history. Most wanted Lashkar-e-Tayyiba terrorist killed in an encounter with security forces in Budgam district of Jammu and Kashmir. IMD forecasts heavy rain in interior Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and northeastern states today. India reaffirms its commitment to achieve nuclear weapons-free world and complete elimination of nuclear weapons. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal to participate in G20 Trade Ministers meeting in Wisconsin, US today. Indian women's compound archery team bags gold medal at Asian Games in Japan. And in men's cricket, second ODI between India and West Indies to be played in Guwahati this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की खास-खास खबरें। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक, केरलम, शुमाल मशरिकी रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियाई हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपनी अहदबस्तगी की तौसीख की है। कॉमर्स और सनअतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में तीरंदाजी में भारतीय खवातीन की कंपाउंड टीम ने सोने का तमगा जीता है। और मर्दों के क्रिकेट में आज दोपहर गुवाहाटी में भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक ही साल में 18 बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करने या उन्हें कमीशन करने के बहरिया के मंसूबों पर 2026 को तारीखी साल करार दिया है। कल नई दिल्ली में भारतीय बहरिया की साल में दो बार होने वाली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि ये पेशरफ्त घरेलू बहरी जहाज साजी निजाम में भारत की बढ़ती मोतबरियत की अक्कासी करती है। दिफाई शोबे में खुद इन्हेसारी से मुतालिक बहरिया की कोशिशों का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने जोर देकर कहा कि भारतीय बहरिया का बहरी जहाजों की तैयारी का इको निजाम अब आलमी पैमानों पर पूरा उतर रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में कमीशन किए गए बहरी जहाज 75% से ज्यादा देसी साख्त के हैं। वजीर दिफा ने मौजूदा निजाम की अहमियत का एतराफ करते हुए भारत के बहरी निगरानी निजाम में खातिर का अपडेट पर जोर दिया। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बहरी आमोदरफ्त का बढ़ता हजम और पेचीदगियां तजजियाती सलाहियतों की मांग करती हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में बहरिया की जदीदकारी के हुकूमत के अज़्म को नुमाया करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि विकसित भारत 2047 के नज़रिए की तकमील में भारतीय बहरिया स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम रोल अदा करेगा। चुनाव कमीशन ने नौजवान वोटर्स के ज़्यादा से ज़्यादा इंदराज को यकीनी बनाने के मकसद से दिल्ली के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में इंदराज के लिए खसूसी कैंपों का अहतमाम किया है। कल बड़ी तादाद में तलबा खसूसी तफसीली नज़रसानी SIR के बारे

0: की सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी के बिरसा पाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। तिरुवनंतपुरम में खेले गए पहले एक रोजा मैच में 8 विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद भारत सीरीज में नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगा। पहले एक रोजा मैच में विराट कोहली और शुभमन गिल ने सेंचुरियां स्कोर की थी, जिससे मेजबान टीम के हौसले बुलंद हैं और वो दूसरे एक रोजा मैच में भी बेहतरीन बल्लेबाजी के सिलसिले को जारी रखना चाहेगी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार इंकलाब ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के हवाले से सुर्खी लगाई है कि बहर हिंद में सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाने वाला भारत पसंदीदा सिक्योरिटी पार्टनर। अखबार ने शहरी हवाबाजी के वजीर के बयान को अहमियत देते हुए लिखा है, नायडू ने दुनिया को भारतीय हवाबाजी की मार्केट से जुड़ने की दावत दी। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर खजाना सीतारमन ने दोहा में नेपाल सऊदी अरब के वजराए खजाना के साथ दो तरफा अहमियत की हामिल मीटिंगें की।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारतीय बहरिया अपनी तारीख में किसी एक साल में की जाने वाली सबसे बड़ी तौसी के तहत साल 2026 में 18 जंगी बहरी जहाजों को बहरिया में शामिल करेगा। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का सबसे मतलूब दहशतगर्द मारा गया। भारतीय महकमे मौसमियात ने अंदरूनी कर्नाटक केरलम और शुमाल मशरकी रियासतों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारत ने न्यूक्लियर हथियारों से पाक दुनिया और न्यूक्लियाई हथियारों के मुकम्मल खात्मे के अज़्म के तहत अपनी अहद बस्तगी की तौसीक की है। और कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल आज अमरीका के विस्कॉन्सन में G20 वज़राए तिजारत की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी से यह खबरनामा खत्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें
3: 0542227658
4: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

जी हाँ, अभी तक तो आपने अंदाज़ा भी लगा लिया होगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं महान फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी की, जिन्हें फिल्म जगत वाले और हम प्यार से ऋषिदा कहते हैं। इन्होंने परिवार, दोस्ती, प्रेम, नौकरी, संघर्ष और रिश्तों जैसे रोज़मर्रा के विषय को अपनी फिल्मों का हिस्सा बनाया, उन्हें कहानियों में ढाला, दर्शकों को पूरे मन से फिल्मों से जोड़ा।

ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म आज के दिन यानी 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ। 27 अगस्त 2006 को इस फानी दुनिया को आपने अलविदा कहा। ऋषिकेश दा ने 4 दशकों तक अपनी फिल्मों के माध्यम से हर आम और खास आदमी को पर्दे पर खुद को देखना सिखाया। विषय को एक खास अंदाज में बयां करना कोई ऋषिदा से सीखे।

कई सालों तक ऋषिकेश दा शिक्षा जगत से जुड़े रहे, लेकिन फिल्मी दुनिया की तरफ आपका हमेशा से रुझान रहा। 1940 के दशक में ऋषिदा ने बीएन सरकार के साथ बतौर कैमरामैन और फिल्म एडिटर के रूप में सहयोग किया। इसके बाद उनकी मुलाकात प्रसिद्ध फिल्मकार विमल रॉय से हुई। विमल रॉय की टीम का हिस्सा बने और दो बीघा जमीन, देवदास जैसे फिल्मों के निर्माण में सहयोगी बने। इन फिल्मों से मिले अनुभव ने ऋषिदास मुखर्जी का पूरा सिनेमाई दृष्टिकोण ही बदल दिया और इनकी फिल्मों में ये छाप आपको हमेशा देखने को मिला।

एक से बढ़कर एक फिल्मों को देने वाले ऋषिकेश मुखर्जी का 1971 में रिलीज फिल्म आनंद को ऋषिदा की सबसे यादगार फिल्म कहें तो गलत नहीं होगा। ये भारतीय सिनेमा की एक कालजयी और सदाबहार ड्रामा फिल्म है। फिल्म जिंदगी को जिंदा दिली से जीने का संदेश देती है। इसका संवाद बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, आज भी लोगों की जुबान पर है।

तमाम फिल्मी पुरस्कारों को जीतने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने नौकरी और मधुमती फिल्म में संवाद के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, पटकथा के लिए अनोखी अदा फिल्म को भी पुरस्कार मिला और 1972 में आनंद फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन कहानी पटकथा के लिए भी पुरस्कार मिला और 1981 में खूबसूरत फिल्म के लिए भी आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पटकथा, गीत, संगीत, कहानी, संवाद का अनोखा संगम अगर कहीं फिल्मों में है तो ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्माताओं की फिल्में हम आराम से देख सकते हैं।

आज मधुरिमा कार्यक्रम समर्पित था 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाले और 1999 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध फिल्मकार ऋषिकेश

Madhurima, the sound of melody. Madhurima. अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की हलचल लखनऊ केंद्र से।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है। जिले की हलचल आज सुनिए अमरोहा और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा सुशासन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में मनाए जा रहे सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ 17 सितंबर को अमरोहा में माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने किया। इस मौके पर कलेक्ट्रेट परिसर में सूचना विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों से संबंधित लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसके उपरांत सभी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में सेवा संकल्प अभियान की समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उन्होंने अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रमों में जन सहभागिता सुनिश्चित की जाए। शिक्षा मंत्री द्वारा दिव्यांगजन कल्याण विभाग की योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल वितरित की गयी। उन्होंने उद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को टूल और चेक वितरित किए। आशीर्वाद का दिया कार्यक्रम के अंतर्गत अमरोहा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 5,65,000 से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि देश ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मना रहा है जिसके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि
2: हमारे देश के सबसे वीर प्रतापी दृढ़ संकल्पशील जिनके संकल्प में कोई विकल्प नहीं है, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दृढ़ निश्चय होकर देश के हित में कार्य करते रहे और 13 तरीके के कार्यक्रम दिए गए हैं। एक महीने कार्यक्रम चलेंगे और जो कार्यक्रम है ये हमारी सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, जन जन तक पहुँचाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक उनका अभिनंदन करती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि वो स्वस्थ और प्रसन्न।
1: सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी द्वारा अमरोहा में 20 सितंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में नवीनीकृत आधुनिक पेंशनर कक्ष का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के वरिष्ठ एवं पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन संबंधी कार्यों के लिए कोषागार आने पर सुगम, आरामदायक एवं सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कक्ष को आधुनिक एवं मूलभूत सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इसमें दिव्यांग एवं अशक्त पेंशनरों के सुगम आवागमन के लिए रैंप तथा चलने में असमर्थ वृद्ध पेंशनरों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स के पास एक बेहतर अनुभव है जो कि नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने में अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकता है।

0: जिले के लगभग 6000 पेंशनर्स के लिए बड़ी उपलब्धि है। तो सरकार ने उन्हें ये सौगात दी है माननीय योगी जी के नेतृत्व में। मैं सभी अपने पेंशनर्स भाइयों का, बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनसे ही अपेक्षा करता हूं कि उनके अनुभवों का लाभ युवा पीढ़ी को होगा और अपने युवाओं के साथ मिलकर देश को, प्रदेश की एक बड़ी प्रगति को आगे ले जाएं।
1: पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक अमरोहा के गंगाधाम तिगरी में हर वर्ष लगने वाले राजकीय कार्तिक पूर्णिमा मेले की व्यवस्थाओं के लिए शासन द्वारा 5.5 करोड़ रुपए अवमुक्त कर दिए गए हैं। इसी क्रम में तैयारियों के मद्देनजर 19 सितंबर को मुरादाबाद मंडल आयुक्त संगीता सिंह ने जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ के साथ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मेले के आयोजन के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की तथा तैयारियों को समयबद्ध ढंग से शुरू करने के निर्देश दिए।
2: धार्मिक मेला है, इसको जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा हम लोग करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे लोग आके एक तरह से कल्पवास टाइप का करते हैं, तो उनको क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, कैसे सफाई मेंटेन कर सकते हैं, कैसे प्लास्टिक फ्री जोन इसको रख सकते हैं, कैसे लोगों को सुविधा हो सकती है, इन सब का ध्यान रखते हुए कुछ मैंने निर्देश दिए डीएम साहब को।
1: मंडल आयुक्त ने आगामी मेले के दृष्टिगत संबंधित अधिकारियों को अपने अपने विभाग से संबंधित कार्य योजना तैयार कर समयबद्ध ढंग से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा। निरीक्षण के दौरान मंडल आयुक्त ने मेला क्षेत्र में पहली बार बनने वाले पोंटून पुल के बारे में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि पोंटून पुल के संबंध में प्रस्ताव तैयार कर शासन को प्रेषित किया जा चुका है। अमरोहा में ग्राम पंचायतों में शासकीय धनराशि के इस्तेमाल में अनियमितता के मामले में डीएम डॉक्टर नितिन गौड़ ने 7 ग्राम पंचायत प्रशासकों को पद से हटा दिया है। अब संबंधित ग्राम पंचायतों में एडीओ पंचायत को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। जोया ब्लॉक की 9 ग्राम पंचायतों में 27 मई के बाद बिजली फिटिंग, बेसहारा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, फॉगिंग, सैनिटाइजेशन व सफाई के नाम पर 23 लाख रुपए निकाल लिए गए। ई स्वराज पोर्टल पर भुगतान और निकासी की जानकारी से मामला सामने आया। डीपीआर ने एडीओ पंचायत जोया और अमरोहा से जांच कराई, जिसमें दर्शाए गए कार्यों की पुष्टि नहीं हो सकी। डीएम ने 9 प्रशासकों को नोटिस देकर 15 दिन में स्पष्टीकरण और भुगतान के साक्ष्य मांगे थे। 2 ने जवाब दिया, जबकि 7 प्रशासकों ने पक्ष नहीं रखा।
3: तो जहां से ये शिकायत मिली है, उन 78 ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को नोटिस दिए गए, जिनमें से 7 को निष्कासित किया गया और बाकी सबका अभी जवाब अवेटेड है। इसमें ग्राम पंचायत सचिवों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और आपके माध्यम से ये मैसेज मैं पहुंचाना चाहता हूं कि शासन आदेश के विरुद्ध ग्राम नदी का ट्रोल न किया जाए।
1: इसके बाद रजबपुर, शकरपुर, समसपुर, शहबाजपुर कला, गफ्फारपुर, अटेरना, सूदनपुर और मंगूपुरा के प्रशासकों को हटा दिया गया है। संबंधित सचिव मोनू कुमार को पहले ही निलंबित किया जा चुका है। अमरोहा में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जज ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायालय के कर्मचारी, प्राविधिक स्वयंसेवक तथा बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे।
4: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार श्रीमाली का।
5: ललितपुर में अक्टूबर माह में संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ सिंह चौहान की अध्यक्षता में अंतर विभागीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में डेंगू, मलेरिया और जल जनित बीमारियों की रोकथाम को लेकर विभागवार तैयारियों की चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को माइक्रो प्लान तैयार कर आपसी समन्वय के साथ अभियान चलाने के निर्देश दिए। हाई रिस्क गांवों और वार्डों में विशेष निगरानी रखने को कहा गया। जल भराव वाले स्थानों पर पानी की निकासी, नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और एंटी लार्वा दवा के छिड़काव पर विशेष जोर दिया गया। कार्यों से कहा गया कि अभियान केवल कागजों तक सीमित न रहे बल्कि फील्ड में गतिविधियां प्रभावी रूप से दिखाई दें। पिछले अभियानों में सामने आई कमियों को दूर करने और फील्ड गतिविधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया कि संचारी रोग नियंत्रण अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर में 2 अक्टूबर को मनाई जाने वाली गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक अशोक कुमार यादव ने की। बैठक में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों के साथ ही शिक्षण संस्थानों में होने वाले कार्यक्रमों

0: रूपरेखा तय की गई। एडीएम ने निर्देश दिए कि 2 अक्टूबर को निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया जाए। इसके बाद महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण किया जाएगा। दोनों महापुरुषों के जीवन, विचारों और सिद्धांतों पर चर्चा भी आयोजित की जाएगी। शिक्षण संस्थानों में प्रभात फेरी, रैली, वाद विवाद, निबंध लेखन और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। वहीं नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के साथ अस्पतालों में भर्ती मरीजों को फल वितरित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ललितपुर में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने जन सुनवाई के दौरान आम जन की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने भूमि चकबंदी, पैमाइश, फसल बीमा, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, बिजली, जल जीवन मिशन और राशन कार्ड सहित कई मामलों से जुड़ी शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। तालबेट के ग्राम टोरी निवासी भान सिंह ने शिकायत की कि उनकी भूमि भूलेख में दर्ज नहीं है। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने फोन पर ही एसडीएम तालबेट से बात की और भूमि को भूलेख में दर्ज कराने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान कई अन्य फरियादियों ने भी अपनी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। भूमि और चकबंदी से जुड़े मामलों के साथ पैमाइश, फसल बीमा, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, विद्युत, जल जीवन मिशन और राशन कार्ड से संबंधित शिकायतें भी सामने आई। जिलाधिकारी ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से फोन पर ही कार्रवाई कराई। वहीं जन शिकायतों के तत्काल निस्तारण की स्थिति नहीं थी। उनमें अधिकारियों को समय सीमा तय कर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही निस्तारण की आज्ञा प्रस्तुत करने को कहा गया। कुल मिलाकर ललितपुर में इन दिनों प्रशासन का फोकस सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान पर है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए चेकिंग और कार्रवाई बढ़ाने, संचारी रोगों की रोकथाम के लिए फील्ड अभियान तेज करने, गांधी जयंती के कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आयोजित करने और जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। यह आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। ये पहली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार विकास केशरी, जो पुत्र हैं भोलानाथ केशरी के और निवासी हैं थाना लालगंज, जिला मिर्जापुर के। विकास केशरी की उम्र है 19 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंगे हुआ और चेहरा गोल है। ये 22 अगस्त 2026 शाम 5:30 से घर से निकले और लौट के नहीं आए। घटना वाला दिन आपका पहनावा स्लेटी फुल शर्ट और काला पैंट था, पैरों में हवाई चप्पल। यदि इनके संबंध में आपको कोई भी सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना लालगंज, जिला मिर्जापुर को सूचना देने का कष्ट करें। ये अगली सूचना भी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार अखिलेश सिंह, जो पुत्र हैं रामचंद्र सिंह के और निवासी हैं बनौली पोस्ट मनौर थाना जमालपुर, जिला मिर्जापुर। अखिलेश सिंह की उम्र है 36 वर्ष, लंबाई 5 फुट 8 इंच, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। ये 15 जुलाई 2026 रात 10 बजे से लापता हैं। यदि इनके संबंध में आपको कोई सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना जमालपुर, जिला मिर्जापुर को सूचना देने का कष्ट करें। और ये अगली सूचना कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार सुनीता तिवारी, जो पत्नी हैं श्याम सुंदर तिवारी की और निवासी हैं बजटा थाना जिगना, जिला मिर्जापुर की। सुनीता तिवारी की उम्र है 34 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, रंगोरा और चेहरा गोल है। ये 21 अगस्त 2026 सुबह 11 बजे से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका

लाल लाल रंग की साड़ी थी। यदि इनके संबंध में भी आपको कोई सूचना मिले तो अपने नजदीकी थाना या थाना जमालपुर जिला मिर्जापुर को सूचना देने का कष्ट करें। और ये सूचना भी कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त है। इस सूचना के अनुसार विनीत त्रिपाठी उर्फ शिवम त्रिपाठी, पुत्र रविंद्र कुमार त्रिपाठी और निवासी हैं ग्राम गोरैया पोस शिखर थाना चुनार जिला मिर्जापुर के। विनीत त्रिपाठी की उम्र है 27 वर्ष, लंबाई 5 फुट 5 इंच, रंगोरा और चेहरा गोल है। ये 8 अगस्त 2026 रात 10 बजे से लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहना

इसे लापता हैं। घटना वाले दिन आपका पहना हाफ पैंट टी शर्ट था, और यदि इनके संबंध में भी आपको कोई सूचना मिले तो अपने नज़दीकी थाना या थाना चुनार जिला मिर्जापुर को सूचना देने का कष्ट करें। एक फ़ोन नंबर है आपका, आप इस पर भी सूचना दे सकते हैं। फ़ोन नंबर नोट करें 7905778840, यानी 7905778840। खोए व्यक्तियों के संबंध में आज की ये सूचना अब यहीं संपन्न होती है। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम हमारे लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के

0: हुए हैं उनका इम्प्लीमेंट किस हद तक हो रहा है और उनकी तरफ लोगों की क्या अवेयरनेस है। उन अब यहाँ बात आती है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो लोकल बॉडीज होती हैं, वो अपनी जगहों पर किस किस तरीके से इन कानूनों का पालन करवा सकती हैं, या लोगों के दिलों में इन कानूनों का पालन करने के लिए कितना डर है। ठीक है, कमी कानूनों में तो नहीं है, कानून तो बहुत सारे बने हुए हैं, कमी जो आती है उनके इम्प्लीमेंट पर आती है कि लोगों तक उन कानूनों को पहुंचाना और लोगों में उन कानूनों के लिए अवेयरनेस पैदा करना, लोगों में उन कानूनों के लिए डर पैदा करना। क्योंकि कोई भी चीज आप देखिए, या तो शौक से होती है या खौफ से होती है। तो शौक से नहीं कर रहा है तो भाई खौफ से ही करें, कुछ ऐसी सजा या कुछ ऐसा फाइन। लेकिन अवेयरनेस कितनी है, लोगों तक इन कानूनों की पहुंच कितनी है, कितना लोग इन चीजों को जानते हैं कि हाँ, अगर मैं भाई चलते चलते बीच सड़क पर थूकूंगा या कहीं पर भी कोई भी कचरा डाल दूंगा तो इसका मेरे पर भी कुछ गलत असर पड़ सकता है। मतलब मोरली देखा जाए तो आपकी सेहत तो उससे असरअंदाज होगी, लेकिन तो लोगों में ये अवेयरनेस होना चाहिए कि ये कानूनी तौर से भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, इसका मेरे पर भी कोई फाइन पड़ सकता है, मुझे भी इसकी सजा हो सकती है। उसमें हमें हमारी जो लोकल बॉडीज हैं, जो हमारा प्रशासन है, उसको काम करने की जरूरत है।
1: समिन, ये तो हुए नजरियात मजहबी, अखलाकी, माशरती और कानूनी अंदाज के। आइए अब जानते हैं साइंटिफिक नजरिए को, और इसके लिए हम बात कर रहे हैं साइंस के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुईन अहमद खान साहब से।
2: जी डॉक्टर मुईन साहब, हमारे प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे मुल्क में, और हमारे मुल्क में ही क्या बल्कि तमाम दुनिया में ही इस वक्त ई कचरा बहुत ज्यादा तादाद में निकाला जाता है, तो ये किस तरह से नुकसानदेह है और इसकी सफाई किस तरह मुमकिन है?
3: ई कचरे की अगर हम बात करें तो ई कचरे के अंदर बेसिकली गैजेट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जिसमें बेसिकली सबसे ज्यादा आजकल मोबाइल फोन्स हैं, आप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और बेसिकली आपके ये पावर बैंक्स हैं, ईयरफोन्स हैं, माइक्रोचिप्स हैं। अच्छा देखिए, अगर हम इसके थोड़ी सी डिटेल्ड स्टडी करें तो हमें ये पता चलता है कि केमिकली ये सब सिलिकॉन है, समझ रही हैं? अब सिलिकॉन क्या है वो समझिए। सिलिका बेसिकली रेत को कहते हैं, सैंड को कहते हैं, ठीक। उसको कंडेंस करके, उसको प्रोसेस करके सिलिकॉन चिप्स बनाई जाती हैं, जो बेसिकली इन सब का पावर, मतलब इनका ब्रेन है सारे गैजेट्स का। इन गैजेट्स के अंदर जो बैटरी लगती है, जो इन्हें पावर देती है, वो होती है साहब लिथियम आयन की बैटरी। और लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं, बेसिकली एक तरीके का रेडिएशन प्रोड्यूस करती हैं। वो रेडिएशन बेसिकली इंसानों के लिए खतरनाक है। अब जो ये ई कचरा अगर इस तादाद में इकट्ठा हो जाए, मैं वार्निंग देके ये बताना चाहता हूं कि ई कचरे को रिसाइकिल करिए, इसे इधर उधर मत फेंक दीजिए, और इसकी जो रेडिएशन है उससे बचने की सबसे ज्यादा कोशिश करिए।
2: डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को ये भी बताइए कि जमीन का कूड़ा, पानी का कूड़ा, ये सब जो जमा होता है, इसका हमारी फिजा पर क्या असर पड़ता है, हमारे आसपास के माहौल पर क्या असर पड़ता है, ये एक साइंसी नजरिए से आप बताइए।
3: देखिए, अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन बेसिकली 5-6 टाइप का होता है, ठीक है। अब तो एक साथ में टाइप का ही पॉल्यूशन है, इसकी मैं आपको एक ब्रीफ वो बताता हूं कि साहब आपने एयर पॉल्यूशन करा, वाटर पॉल्यूशन करा, सॉयल पॉल्यूशन, इसके बाद आपने करा साहब थर्मल पॉल्यूशन। अब थर्मल पॉल्यूशन क्या है कि भाई आपने जो है अपनी दुनिया, यानी कि जिसे हम प्लेनेट अर्थ कहते हैं, जो हमारा घर है, जहां से हम कहीं नहीं जा सकते, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। और टेम्परेचर इतना इंक्रीज कर दिया तो ये थर्मल पॉल्यूशन ही तो है। इसके बाद अब नया जो आ रहा है वो आ रहा है साहब ई पॉल्यूशन, और लास्ट में आता है स्पेस पॉल्यूशन। आपने सैटेलाइट इतने डाल दिए तो स्पेस पॉल्यूशन नहीं कर रहे क्या, जो रॉकेट आप तमाम छोड़े चले जा रहे हैं? बेसिकली पॉल्यूशन क्या है कि किसी ऐसे एनवायरमेंट में किसी उस चीज का पहुंचा देना जो उसका हिस्सा नहीं है, वो जो है नुकसान देगी। अब फिजा को खराब करने का सारा जो मतलब दारोमदार है वो इंसानों ही पे है, हम नहीं करा ये सब, भाई नेचुरली कहाँ पोल्यूशन होता है। तो ये ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंजेस जो है ये इस पोल्यूशन की वजह से है, थर्मल पोल्यूशन जो आपने बढ़ा दिया है। तो इससे जरा सा आप खबरदार होके ये सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, और देखिए हर इंसान की छोटी छोटी कोशिश

जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। आज की कलाकार हैं गीतांजलि मौर्य। पचरा के बाद कार्यक्रम के आखिर में आपके स्वर में प्रस्तुत है ये सुहर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत, कलाकार थी गीतांजलि मौर्य। इनके गाए लोकगीत आप दिन में 1:45 पर और शाम को 6:30 पर कार्यक्रम कृषि जगत में भी सुन सकते हैं। थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम झनका।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 4 अक्टूबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर पृथ्वी राज सेन। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। और साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेव्स ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वही हमारा साथ।

में जो रिदम है वो। जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुँचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @airvaranasi। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।

आए दिन बहार की। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी की बोल थी, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और अब आइए सुनते हैं निदा फाजली का लिखा है गीत आशा भोसले और अनवर की आवाज़ों में। खयाम का संगीत है और फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुन रहे हैं कार्यक्रम झनकार। कार्यक्रम का ये अगला गीत है भूमिका फिल्म से। प्रीति सागर की आवाज है मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा की और संगीत वंशराज वनराज भाटिया।

0: हेलो फोन इन फरमाइश, आपके दिल की आवाज। जी हाँ, आप भी यही कहेंगे जब सुनेंगे खुद अपनी ही आवाज कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में। तो फोन कीजिए, इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। 222-1052 और 222-1050 ये नंबर डायल करना है STD 0542 के साथ। रिकॉर्डिंग हर बुधवार सुबह 10:10 से 11 बजे तक, प्रसारण शनिवार दिन 11 बजे से और रविवार को 12 बजे से, पूरे 1 घंटे।
1: एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो।
0: सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव, DTH, DRM, वेब्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।
2: हाँ।

श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 4 अक्टूबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर पृथ्वी राज सेन। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।

प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर प्रसारित होने वाला कार्यक्रम लोक रंग अब व्हाट्सएप पर आधारित होगा। यानी आप कार्यक्रम के आरंभ में बताए हुए कला

आरों के पसंदीदा लोकगीत व्हाट्सएप के जरिए सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वही है जो फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का है। करना सिर्फ ये है कि मैसेज आपको लोक रंग कार्यक्रम में रविवार को दिन में 1:30 से 2 बजे के बीच ही करना है, यानी कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान, और बताए हुए कलाकारों से ही अपनी फरमाइशें हमें भेजें। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 7905519981, यानी 7905519981। तो अब प्रत्येक रविवार को दिन में 1:30 पर सुनिए फरमाइशी लोक रंग कार्यक्रम व्हाट्सएप पर आधारित, और बने रहिए आकाशवाणी वाराणसी के साथ, हर पल हर घड़ी आपके साथ।

0: लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना बेताब फिल्म का ये गीत। गीत आनंद बख्शी का लिखा हुआ था, संगीत राहुल देव बर्मन का था।
1: काम किया है
0: लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ें।

लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाज़ों में फिल्म आखिर क्यों का ये गीत आपने सुना। इंदिवर ने इस गीत को लिखा था, राजेश रोशन का संगीत था। झनकार कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं नीरज का लिखा है गीत। राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में इसे गाया है मोहम्मद रफी ने। फिल्म है गैम।

0: हेलो फोन इन फरमाइश, आपके दिल की आवाज। जी हाँ, आप भी यही कहेंगे जब सुनेंगे खुद अपनी ही आवाज कार्यक्रम हेलो फोन इन फरमाइश में। तो फोन कीजिए, इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। 222-1052 और 222-1050 ये नंबर डायल करना है STD 0542 के साथ। रिकॉर्डिंग हर बुधवार सुबह 10:10 से 11 बजे तक, प्रसारण शनिवार दिन 11 बजे से और रविवार को 12 बजे से, पूरे 1 घंटे।
1: एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो।
0: सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव, DTH, DRM, वेब्स OTT और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर।

मुकेश की आवाज़ में दीवाना फिल्म का ये गीत था, शैलेंद्र की रचना, संगीत शंकर जयकिशन का। और अब आइए आपको सुनवाते हैं यशुदास की आवाज़ में चित्रचोर फिल्म का ये गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

और अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। नमक हराम फिल्म का ये गीत है आनंद बख्शी का लिखा हुआ और इसे संगीत से संवारा है राहुल देव बर्मन ने।

सिकेंद्र के साथ कार्यक्रम झनकार का ये आखिरी गीत हमने लिया फिल्म बातों बातों में से। बातों बातों में फिल्म का ये गीत गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। अमित खन्ना का गीत है और संगीत राजेश रोशन का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार।
1: अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, DTH, DRM, न्यूज ऑन AIR ऐप और वेब्स OTT पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

0: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 4 अक्टूबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर पृथ्वी राज सेन। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आपके ईमेल संदेशों पर आधारित है और आज के इस कार्यक्रम में हम उन श्रोताओं के ईमेल संदेश और उनकी पसंद के गीत को शामिल करेंगे जिन्होंने पहले से ही हमारे मेल आईडी पर अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर हाजिर हूं मैं, आपकी रेडियो हमसफर अंजना झा। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और आपको जो पहला गीत आज के इस कार्यक्रम का हम सुनवाएंगे उसके लिए जो फरमाइशें हम तक पहुंची है उन श्रोताओं के नाम हम आपको बताए देते हैं। ये फरमाइश हम तक पहुंची तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, फजान, फरहान, समायरा और आजमीन गुड़िया का। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामन शेंडे और प्रणय प्रसिद्धि। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोथ, सीताराम कांगड़ा और साहिल। ये फरमाइश है बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, डब्बू, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु, अर्णव आनंद।

सत्यमानंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत गुड्डी भगत। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां आजाद, नगर लक्सर, हरिद्वार, उत्तराखंड से, और आप सभी को आपकी पसंद का आज के इस कार्यक्रम का ये पहला गाना।

हेमलता की आवाज़ में आप सुन रहे थे नैया फिल्म का गीत। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था। और कार्यक्रम में जो अगला गीत आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाई। दोनों ही गीतों के लिए फरमाइश इन सभी श्रोताओं की। और ये हमारे श्रोता हैं देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। आपका ये संदेश आया बालोद छत्तीसगढ़ से और बन बघेरा राजनांदगांव से योगेश सारवा, आशा सारवा। पटेल नगर मुगल सराय से सुनील कुमार सिंह। फरमाइश आई हमारे श्रोता की, ये ईमेल संदेश आया है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह और उनकी बिटिया वेदा सिंह का। सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और अवंतिका। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। ग्राम नागरकोहरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, पूजा प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और बंटी बबली वर्मा। छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल राजेश। और एक और फरमाइश शामिल कर रहे हैं ये हमारे श्रोता हैं, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू, रजन रजक, विपिन गुप्ता, प्रकाश सोनी, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा। तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आज के इस कार्यक्रम का अगला गाना।

0: येसुदास और हेमलता की आवाजें। फिल्म का नाम दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 4 अक्टूबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है पोषण की कमी से होने वाली बीमारियां। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे डॉक्टर होंगे डॉक्टर पृथ्वी राज सेन। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 1 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम, आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: स्वागत है आपका एक बार फिर से इस कार्यक्रम में जिसका नाम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और इस कार्यक्रम में जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है सूरज। मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें हैं। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीत शंकर जयकिशन का।

सूरज फिल्म के इस गीत को सुनना चाहा आप सभी श्रोताओं ने। वसीम अकरम, अजीम अकरम, बबलू डब्लू, मुन्नी चुन्नी और गुड़िया खातून, बिहार से ये ईमेल संदेश। फरमाइश आई सत्येंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया की, जालौन उत्तर प्रदेश से। ग्राम बिटोडा, तहसील मंगरूलपीर, पश्चिमी विदर्भ से। योगी राज मस्के, श्रीहरि मस्के, इंदुमती मल्हार, कविता मोहन, विशाल, कुशल, गोपाल और इनके सभी मित्रगण। ज्यूत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता, बक्सर बिहार से।

बारमेड़ राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, राम देवरा से दिनेश चौहान और इनके सभी मित्रगण। ये संदेश है भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमीला चीनू, दीपक श्याम कुंवर और अनुश्री। बनवारीलाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम, रवि, आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और श्याम और इनके परिवार के सभी सदस्यों का ये संदेश फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से। वीरेंद्र सुरेंद्र शमशेर और मनोज भ्याण का ये ईमेल संदेश जीवरा हिसार से। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नोहानकर, निर्मला, विशाल, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण, इंकले, सोपान, आशीष और इनके सभी दोस्त।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ें थीं। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीत शंकर जयकिशन का। और फरमाइश आई आप सभी श्रोताओं की वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। ग्राम कुंडावल तारा, लार रोड स्टेशन, देवरिया, उत्तर प्रदेश से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या, इंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति और निर्मला त्रिपाठी। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी, रसीद वारसी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली, सबीहा और अंजुमन खान। धानोरा विटाली महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन। बड़ी गेवी वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, नवीन सिंह और इनके सभी मित्रगणों का ये ईमेल संदेश। संदेश आया जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी का। आशु, अश्विन, गोविंद, टोनी, लव दीवान, राधे भाविक, पंचकुला सेक्टर से और यहीं से अतुल शर्मा। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी, तनवीर आलम अंसारी। निमनाबाद जींद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और कर्मजीत कौर। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का ईमेल संदेश शामिल किया। गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ अनवर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी। और शामिल कर रहे हैं इस ईमेल फरमाइश को संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जालंधर से।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे नाइट इन लंदन फिल्म का गीत, और कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाएंगे आक्रमण फिल्म से, और बहुत सारे श्रोताओं के फरमाइश को हम इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए श्रोताओं के नाम पढ़ते हैं। हमारे ईमेल आईडी पर पहले से ये संदेश पहुंच चुके थे आज के इस कार्यक्रम के लिए। गमहरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मोराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल, चकिया बाजार चंदौली से सुंदर, सुमन, सुभाष और शिवांश जायसवाल, अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण, योगिता, प्रियली, पार्थ और इनके परिवार के सभी सदस्य ये ईमेल संदेश शामिल कर रहे हैं। रोहित यादव, पंकज यादव, अंगद यादव, आयुष यादव, आर्यन यादव, आदर्श और हार्दिक यादव का फतेहपुर उत्तर प्रदेश से, रायपुर अनई बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन और मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम। खरगोन सनावित मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा और राजकुमार मोडाना बोडाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। विट्ठल जाधव, अनुसुईया, पवन राजे जाधव, नागपुर से ईमेल संदेश आपने भेजा है।

फरमाइशाई दरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम और पुन्नू वडतकर का ये फरमाइशी संदेश। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मारकंडे, संजय मारकंडे और बेबी किट्टू। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह, सीटी दीवाना, गुरवंश सिंह। और ये फरमाइशी संदेश है हमारे पास, शामिल कर रहे हैं वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह और कोको रानी का। पतली गली बनारस से मुश्ताक सुलेमानी, शाहिद सुलेमानी। श्रोताओं, बहुत ही सुंदर सुंदर जो गीत हैं, मधुर गीत हैं, उनकी फरमाइश आप हम तक पहुंचाते रहते हैं और उनमें से ही कुछ गीतों को चुनकर हम इस कार्यक्रम में आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए सुनवा रहे हैं आपको ये गीत।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज के इस कार्यक्रम में जो अगला गाना आपकी पसंद का हम आपको सुनवाएंगे, उस फिल्म का नाम है कभी कभी। और फरमाइश जिन श्रोताओं की हम तक आई है, एयरपोर्ट रोड वन्ना नगर इंदौर से नारायण भावखड़ से ललिता आशा रानी संजना परी गणेश कार्तिक कुमारी लड्डू और यहीं से है स्वाति प्रयाग चौधरी, आपका ये संदेश है। और अगला संदेश धनौरी तेली वाला से निसार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया अयान।

लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके मित्रगण। इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद, अजरा तबस्सुम, मड़िया हूँ जौनपुर से। और ये संदेश आया है मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका, गंगानगर राजस्थान से। ग्राम बगबुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष। छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जसी, सीता और गीता। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य, लदावली मुरादाबाद से।

ये गीत हम आपको सुनवा रहे थे कभी कभी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज थी। गीत को लिखा था साहिर ने, संगीत खयाम का था। और कार्यक्रम में जो अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है गीत गाता चल, आरती मुखर्जी।

मुखर्जी की आवाज़। और पसंद आप सभी श्रोताओं की है गीत गाता चल फिल्म के इस गीत को सुनने की। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा। विनय प्रजापति गोविंद प्रजापति वंदना प्रजापति राहुल प्रजापति और विद्या प्रजापति जलालीपुरा वाराणसी से। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा देवी राघव कुमार और भानुप्रिया। ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका और रमेश चंद्र। गुलाबदास मानिकपुरी राजादास मानिकपुरी रानी मानिकपुरी लेवाई छत्तीसगढ़ से। जाकिर मुलाणी सुमैया सुबान समीर सलमा मुमताज दिलशाद मुलाणी नसीर और इनके परिवार के सभी सदस्य पंढरपुर से आपका फरमाइशी ईमेल संदेश।

आरती मुखर्जी की आवाज में आप सुन रहे थे गीत गाता चल फिल्म का गीत, और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवाएंगे भीगी पलके फिल्म से। और इस गीत को सुनने की फरमाइश आप सभी श्रोताओं की आई है। ये फरमाइश है जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया,

संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता नांदेड़ महाराष्ट्र से। चंदू कुलकर्णी हेमलता और सी आर कुलकर्णी दुर्गई सेलू से। विनोद कुमार रामनिवास छिपा और योगेश शर्मा हनुमानगढ़ राजस्थान से। मलियान सरधना मेरठ से। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन सरधना मेरठ से। आदि और अंश जैन। मोहम्मद सईद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और इनके परिवार के सभी सदस्य ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से। फरमाइशाई परभणी महाराष्ट्र से। रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और इनके परिवार के सभी सदस्य। कासम कॉलोनी सनावत से। यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीश खत्री, नूर मीणा, इरफान और कासिफ के। और भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल, नंदिनी जंघेल। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, ओशिका, आरवी और अंजलि।

श्रोताओं, आप फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम जो कि आपके ईमेल संदेशों पर आधारित है, उसका आखिरी गीत सुन रहे हैं। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हम आपके पहले से भेजे हुए ईमेल संदेश और जो गीत आपने हम तक पहुंचाए होते हैं अपनी पसंद के, उन्हीं को शामिल करते हैं। आज के कार्यक्रम का यह आखिरी गीत आप सुनिए और कार्यक्रम समाप्त करने की मुझे यानी अपनी रेडियो हम सफ़र अंजना झा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए अब सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: समय कभी रुकता नहीं, जो बीत गया उससे सीखिए और आने वाले समय का स्वागत नई उम्मीद, नई ऊर्जा और नई शुरुआत के साथ कीजिए।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग छत्तीसगढ़ से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: इसके साथ साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अलकबीर। वो लिखते हैं,
3: आपने लिखा है सप्रेम नमस्कार विमलेश दीदी जी और अजीत सर जी। 31 अगस्त को जापान में मशीनों को रिटायर करने के बारे में जो आपने बताया वो हमें बहुत ही भावुक कर गया। सोचिए जो देश निर्जीव मशीनों के लिए इतना आदर रख सकता है तो उनमें मानव के लिए कितनी श्रद्धा होगी। हमें भी सबके लिए कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए।
2: चरखी दादरी हरियाणा से
3: आप लिखते हैं, श्रीमान आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए श्रोताओं के लिए मोबाइल नंबर देने का कष्ट करें, धन्यवाद।
2: जी, इस दिशा में हमारा प्रयास जारी है। नंबर प्राप्त होने पर आप सबको सूचना दे दी जाएगी।
3: अगला संदेश हमें मिला है गेंदा टोला बाजार चौक जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता और गजेंद्र गुप्ता जी का।
2: छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू।
3: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: धन्यवाद आप सबको प्यारे प्यारे संदेशों के लिए।
3: एक बार फिर से सभी श्रोताओं का बहादुर बच्चों पर आधारित रेडियो श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है।
2: साथियों, आज हम एक ऐसी बच्ची की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी उम्र तो बहुत छोटी थी लेकिन उसकी समझदारी ने उसे असाधारण बना दिया। आज पूरी दुनिया में उसे उदाहरण के रूप में याद किया जाता है।
3: बिल्कुल, और इस कहानी की सबसे खास बात यह है कि उस बच्ची ने जो कुछ किया वह किसी महान नेत्री की तरह नहीं बल्कि ध्यान से सीखने और सही समय पर सही बात कहने के कारण किया।
2: श्रोताओ, उस बच्ची का नाम था टिली स्मिथ। बात तब की है जब वो वर्ष 2004 में अपने परिवार के साथ थाईलैंड के समुद्र तट पर छुट्टियां मना रही थी।
3: छुट्टियां यानी समुद्र, रेत, लहरें और उनके बीच में ढेर सारी मस्ती।
2: जी,
3: नए साल का अवसर था इसलिए बहुत सारे पर्यटक भी समुद्र के तट पर छुट्टियां मना रहे थे।
2: सभी मगन थे लेकिन तभी टिली स्मिथ ने गौर किया कि अचानक समुद्र का व्यवहार कुछ अजीब सा होने लगा। पानी में कुछ असामान्य परिवर्तन दिखाई देने लगे
3: और टिली ने देखा कि समुद्र का पानी पीछे हट रहा है।
2: जी,
3: समुद्र की सतह असामान्य लग रही है। लहरें कभी कभी बहुत तीव्र हो जाती तो कभी बहुत धीमी।
2: जी,
3: उसे लगा शायद ये वही संकेत हो सकता है जिसके बारे में उसने कक्षा में पढ़ा था। उसके मस्तिष्क में एक शब्द गूंज उठा,
2: सुनामी, यानी समुद्र में उठने वाली बहुत बड़ी और विनाशकारी लहरें।
3: बिल्कुल साथियों, उसने अपनी कक्षा में ये भी पढ़ा था कि सुनामी सामान्य समुद्री लहरों जैसी नहीं होती।
2: जी,
3: समुद्र के भीतर भूकंप या दूसरी बड़ी भूगर्भीय हलचल से बहुत बड़ी मात्रा में

0: अनिविस्थापित हो सकता है।
1: जी
0: इससे समुद्र की लहरें तट की ओर बहुत तेजी से और अत्यंत शक्तिशाली रूप में बढ़ सकती हैं।
1: फिर उसने अपने माता पिता को बताया कि कुछ गड़बड़ है और इसी समय तुरंत लोगों को समुद्र तट से दूर चले जाना चाहिए। फिर क्या था, उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताना शुरू किया।
0: तो विमलेश जी, जब उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया तो क्या लोगों ने उनकी बात मान ली?
1: देखिए, शुरुआत में सबको विश्वास नहीं हुआ, लेकिन टिली लगातार सबको समझाती रही। उसने स्कूल में समुद्र के ऐसे व्यवहार के बारे में पढ़ा है और ये निश्चित रूप से सुनामी का संकेत हो सकता है।
0: यानी हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पढ़ाई को सिर्फ परीक्षा के लिए ही याद नहीं किया था,
1: जी
0: बल्कि वास्तविक जीवन में उसका इस्तेमाल किया।
1: जी
0: तो विमलेश जी, फिर आगे क्या हुआ?
1: लोगों ने जब समुद्र के विचित्र व्यवहार को देखा तो वो भी समझ गए कि ये सामान्य संकेत नहीं है। फिर तुरंत वहां मौजूद लोगों को समुद्र तट से हटाया गया और सुरक्षित स्थान की ओर ले जाया गया।
0: और कुछ ही समय बाद सुनामी की भयंकर लहरें वहां आ पहुंची। सब कुछ बहुत डरावना और विनाशकारी था।
1: साथियों, वर्ष 2004 की हिंद महासागर की ये सुनामी एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा थी जिसने कई देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया और बहुत बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ।
0: लेकिन टिली की सतर्कता के कारण उस समुद्र तट पर मौजूद बहुत से लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थान तक पहुंचने का मौका मिला।
1: जी हाँ साथियों, टिली की कहानी दुनिया भर में इसलिए प्रसिद्ध हुई क्योंकि उसने दिखाया अगर बच्चा ध्यान से पढ़ता है तो उसकी शिक्षा कभी भी काम आ सकती है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अक्सर हम बच्चों से कहते हैं पढ़ाई करो, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, लेकिन पढ़ाई का उद्देश्य केवल अच्छे अंक पाना ही नहीं है। क्यों विमलेश जी?
1: बिल्कुल अजीत जी, सही कहा। सोच समझकर की गई पढ़ाई हमें जीवन की परिस्थितियों को समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता देती है।
0: और बालिका टिली इसका बहुत सुंदर उदाहरण है।
1: जी
0: उसने जो पढ़ा था उसे याद रखा, परिस्थिति को ध्यान से देखा और डरने के बजाय लोगों को चेतावनी दी।
1: अजीत जी, मुझे लगता है इस कहानी में एक और महत्वपूर्ण बात है,
0: वो क्या?
1: वो ये है आवाज उठाने का साहस। कभी-कभी हमें सही बात पता होती है लेकिन हम ये सोचकर चुप हो जाते हैं कि लोग मेरी बात क्यों मानेंगे, कहीं मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा।
0: लेकिन टिली ने ऐसा नहीं किया, उसने बलपूर्वक अपनी बात कही,
1: जी
0: क्योंकि उसे लगा कि अगर वो चुप रही और खतरा सच निकला तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
1: यानी सही ज्ञान के साथ साहस भी जरूरी है।
0: बिल्कुल विमलेश जी, एक और बात, संकट के समय घबराने के बजाय संकेतों को समझना चाहिए।
1: मुझे लगता है अजीत जी कि सिर्फ आज के बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए ये कहानी बहुत उपयोगी है। बहुत जरूरी है कि हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पढ़ें, भूकंप, सुनामी, बाढ़, चक्रवात और आग जैसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए ये जरूर जानें।
0: जी हाँ श्रोताओ, टिली स्मिथ की कहानी हमें बहुत सुंदर संदेश देती है, और वो ये कि
1: ध्यान से सीखा हुआ ज्ञान सही समय पर जीवन बचा सकता है,
0: और मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि कभी अपने ज्ञान को छोटा मत समझिए।
1: क्योंकि सही समय पर एक छोटी सी जानकारी भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है।
0: तो उमंग कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओ, हम आप सबको यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए, समझिए, सवाल पूछिए और जो सीखें उसे अपने जीवन में लागू भी करने की कोशिश कीजिए।
1: क्योंकि किताब का ज्ञान तभी सार्थक है जब वो हमें बेहतर और अधिक जागरूक इंसान बनाए।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुनी बहादुर बालिका टिली स्मिथ की कहानी। अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा आज का प्रश्न है, सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सुनामी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है बया हमारी चिड़िया रानी।
1: कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता को इस कार्यक्रम में मधुर गीत संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि बया पक्षी कितने कौशल से अपना आकर्षक घोंसला बनाती है।

0: बच्चों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। पता है, वैसे तो सभी पक्षियों के घोंसले सुंदर होते हैं, लेकिन सबसे सुंदर घोंसला बया पक्षी का ही माना जाता है। एक बात बहुत रोचक है, और वो ये कि बया रानी के घोंसले में उसके परिवार और बच्चों के आराम से रहने के लिए अलग अलग जगह भी होती है। ये तो बात हुई बया पक्षी के घोंसले की। अब आप बताइए कि आपने और किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं। अपने शिक्षकों और बड़ों की सहायता से अलग अलग पक्षियों के घोंसले देखिए और उनके चित्र बनाइए। आपने गीत में सुना था कि बया रानी नदी से पानी लाती है, लेकिन जरा सोचिए और मालूम कीजिए कि यदि कहीं नदी या तालाब भी न हो तो बया रानी या दूसरे पक्षियों को पानी कहाँ से मिलता होगा। अब आपके करने के लिए एक काम, जैसे हमें पानी चाहिए वैसे ही पक्षियों को भी तो पानी चाहिए, है ना? पक्षियों को पानी मिले इसके लिए आप अपने घर की मुंडेर पर या किसी खुली जगह पर एक बर्तन में उनके लिए पानी रख सकते हैं। तो करके देखिए ना, आप भी खुश होंगे और पक्षी भी बहुत खुश होंगे। अभी आप सुन रहे थे एक खूबसूरत कार्यक्रम बया हमारी चिड़िया रानी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा भारतीय वायुसेना के जांबाज सैनिक निर्मलजीत सिंह सेखों की वीरता के बारे में जानकारी दी गई है, जिसका प्रदर्शन उन्होंने भारत पाक युद्ध के दौरान किया था। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र योद्धा हैं जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। इन वीरों ने समरांगन में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आइए आज याद करते हैं भारतीय वायुसेना के जांबाज योद्धा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को, जिन्हें उनके अतुल्य रणकौशल और अप्रतिम शौर्य के कारण देश के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: निर्मलजीत सिंह सेखों का जन्म 17 जुलाई 1945 को इसवाल गांव में हुआ था। पिता सरदार त्रिलोक सिंह सेखों और माता हरबंस कौर घर में इस बालक के आगमन से बेहद प्रसन्न थे। इसवाल गांव पंजाब के लुधियाना शहर के समीप हलवारा एयरफोर्स

0: स्टेशन के पास थी।
1: सीमावर्ती सैन्य हवाई अड्डा होने के कारण हलवारा एयरफोर्स स्टेशन पर युद्धक विमानों का आना जाना लगा रहता था। इसलिए कहना ना होगा कि बालक निर्मल ने पैदा होने के बाद माता पिता और परिजनों की स्नेह भरी पुचकार और पंजाबी लोक गीतों के अलावा युद्धक विमानों की गर्जना भी सुनी थी।
0: संभवतः इसीलिए बचपन से ही उनके मन में वायुयानों का आकर्षण कूट कूट कर भरा था। जब भी किसी विमान की आवाज आती वो झट से घर के बाहर निकलकर विमान को देखने की कोशिश करते।
2: माँ, मुझे हवाई जहाज देखना बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा?
2: मैं तो जा रहा हूँ हवाई जहाज देखने।
1: अरे अरे पुत्र सुन तो, तू भी ना। अरे
2: मैं तो गया हवाई जहाज देखने।
1: अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना।
0: जैसे जैसे वो बड़े होते गए विमानों के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता ही गया। जब वो चमचमाती हुई सैनिक वर्दी में वायु सैनिकों को देखते तो उनके मन में सेना में जाने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगती। जब निर्मल के गांव में जवान छुट्टियों में घर आते तो बालक निर्मल उन्हीं के साथ अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता।
2: सत श्री अकाल चाचा।
3: सत श्री अकाल।
2: छुट्टी पर आए हो?
3: अरे निर्मल, तुम तो बहुत बड़े हो गए। हाँ, मैं कल ही आया हूँ। और कैसे हो पुत्र?
2: मैं ठीक हूँ चाचा, मुझे आप लोगों की वर्दी बहुत अच्छी लगती है।
3: हाँ पुत्र, हमारी वर्दी तो है ही शानदार। अरे भाई, देश की सेवा करने वालों की वर्दी तो शानदार ही होगी ना।
2: मैं भी सेना में जाऊंगा। चाचा बताइए ना, आप लोग सेना में क्या क्या करते हैं?
3: अरे पुत्र, हम कसरत करते हैं, परेड करते हैं, युद्ध का अभ्यास करते हैं और लोगों की सेवा भी करते हैं।
2: बंदूक भी चलाते हो?
3: हाँ भाई, सैनिक हैं तो बंदूक तो चलाएंगे ही ना।
2: और हवाई जहाज भी उड़ाते हो?
3: हाँ।
2: मैं भी सेना में जाकर हवाई जहाज उड़ाऊंगा।
3: जरूर पुत्र जरूर, लेकिन इसके लिए ना पहले अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पूरी करो।
2: जी चाचा।
1: निर्मल को हरी सिंह नलवा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। हरी सिंह नलवा 19वीं शताब्दी के एक सुप्रसिद्ध योद्धा थे। उनके शौर्य की गाथाएं पंजाब के गांव-गांव में बताई और गाई जाती हैं।
0: निर्मल जीत अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करने के बाद लुधियाना के समीप अजीतसर मोहे नामक कस्बे में स्थित खालसा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। सन 1962 में उन्होंने दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में दाखिला लिया। यहां वो नेशनल कैडेट को यानी एनसीसी में शामिल हुए और एरो मॉडलिंग में अपनी विशेष रुचि दर्शाई।
1: इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध छिड़ गया। भारतीय सेना की शानदार विजय हुई। सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से जन जन में फैल गए।
0: भारतीय वायु सेना में शामिल होने के अपने चिर संचित स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने बीच में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने भारतीय वायु सेना में आवेदन किया और आखिरकार 4 जून 1967 को उन्हें भारतीय वायु सेना में नियुक्ति मिल गई।
1: शीघ्र ही उनकी पदोन्नति हो गई और वो फ्लाइंग ऑफिसर के पद तक पहुंच गए और भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग बुलेट्स कही जाने वाली 18वीं स्क्वाड्रन में शामिल हो गए। अपने विनम्र स्वभाव के कारण वो सबके चहेते बन गए। सभी उन्हें भाई कहकर बुलाते थे। अपने मातहतों के प्रति भी उनका रवैया अत्यंत मैत्रीपूर्ण था।
0: फ्लाइंग ऑफिसर जैसे उच्च पद पर होते हुए भी वो हर काम के लिए तैयार रहते। उनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं था। एक दिन की बात है, वो एयरफोर्स कमांड ऑफिस से लौटते हुए सैनिक हवाई अड्डे के हैंगर में पहुंच गए। हवाई अड्डे में हैंगर उस जगह को कहते हैं जहां विमानों को मरम्मत, तकनीकी देखभाल और सफाई

0: के लिए रखा जाता है।
1: गुड मॉर्निंग मान सिंह, कैसे हो?
2: निर्मल सर, आप यहाँ?
1: हाँ, मैं यहाँ। एयरफोर्स कमांड ऑफिस गया था, लौटते हुए सोचा कि एयरक्राफ्ट हैंगर से होता हुआ चलूं। अरे वाह, तुमने तो बहुत अच्छी तरह से इस एयरक्राफ्ट को साफ किया। देखो ना यार, कैसा चमक रहा है, बहुत खूब।
2: सर, ये तो हमारा काम है।
1: मानसिंह, मुझे लगता है कि इस विमान की टेल को कुछ और चमकाने की जरूरत है। जरा वो क्लीनिंग टूल तो देना मुझे।
2: सर, आप भला सफाई करेंगे? ये तो हमारा काम है सर।
1: नहीं मानसिंह, अगर हम जहाज उड़ा सकते हैं तो इसकी सफाई भला क्यों नहीं कर सकते? अरे दो ना मुझे, लाओ। एक मिनट, ये पॉलिश देना। हाँ, पॉलिश देना। और देखो क्या चमक रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा मेरा इसमें।
3: तो ऐसे थे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। उनके बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। उन दिनों भारतीय वायुसेना के पास युद्धक विमानों में मुख्य रूप से छोटे आकार के नेट विमान हुआ करते थे। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का कद बहुत लंबा था, इसलिए छोटे लड़ाकू विमान नेट 657 में बैठ पाना उनके लिए बहुत असहज था।
1: एक मिनट मानसिंह, तो मैंने फिट होने दे यार। एक मिनट, मैं अपने घुटने जरा से मोड़ देता हूँ। हो गया फिट, स्मार्ट लग रहा हूँ ना?
0: फिर भी निरंतर अभ्यास के कारण वो इन छोटे विमानों को भी उड़ाने में सिद्धहस्त हो गए थे। वो कमाल के पायलट थे। जब वो अपना विमान उड़ाते तो उनकी कलाबाजियां देखते ही बनती। और फिर आया 1971 का साल। पाकिस्तान में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में हवाई हमलों के द्वारा युद्ध छेड़ दिया।
3: पाकिस्तानी हवाई हमले में भारत के कई सामरिक महत्व के क्षेत्र तबाह हो गए थे। 14 दिसंबर 1971 का दिन, समय प्रातःकाल, लगभग 10 बजे। अचानक श्रीनगर एयरबेस का सायरन बजने लगा। ये संकेत था पाकिस्तानी हवाई हमले का। श्रीनगर एयरफील्ड पर दुश्मन के F-86 श्रेणी के 6 सेबर जेट विमानों ने हमला कर दिया था। पाकिस्तानी विमानों ने एयरफील्ड में धुआंधार बम बरसाने शुरू कर दिए।
0: सामरिक समुदाय में ये माना जाता था कि युद्ध क्षमता की दृष्टि से पाकिस्तानी सेबर जेट विमान अपनी तकनीकी विशेषताओं के कारण भारत के नेट विमानों की अपेक्षा अधिक सक्षम है। श्रीनगर एयरफील्ड में नेट विमानों की एक टुकड़ी किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
3: आदेश पाते ही फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपने नेट विमान से टेक ऑफ किया। सेखों हवा में पहुंचे ही थे कि उन्हें 6 पाकिस्तानी लड़ाकू सेबर जेट विमान घेर चुके थे, जो लगातार उन पर बम बरसा रहे थे।
0: और अब शुरू हुआ लड़ाकू विमानों के बीच आमने सामने का भीषण युद्ध। एक ओर 6 शक्तिशाली सेबर जेट विमान थे और दूसरी ओर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का इकलौता नेट विमान। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों अपने अपूर्व रणकौशल से पाकिस्तानी विमानों से भिड़ गए। उनकी फुर्ती देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी कुशलता से विमान उड़ाया कि उनकी चपलता और रफ्तार देखकर दुश्मन भी चकित रह गया।
3: इसी बीच उनका विमान शत्रु के निशाने पर आ गया। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के विमान को 6 पाकिस्तानी विमानों से घिरा हुआ देखकर भारतीय एयरफोर्स ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष से उन्हें रेडियो संदेश भेजा गया।
4: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों, आपके विमान को गोली लगी है।

0: आप तुरंत रनवे पर वापस आएं।
1: सर अभी तो दुश्मन के दो दो जहाज मेरे सामने हैं। जब तक मारूंगा नहीं तब तक लौटूंगा नहीं।
2: दुश्मन का ये वाला जहाज बिल्कुल सामने है। निशाना लगाता हूं। आप बिल्कुल निशाने पर आ गया। ये तो ऊपर से निकल गया। मैं इसके ऊपर जाता हूं। वहां से निशाना लगाना आसान होगा।
0: फ्लाइंग ऑफिसर देखो, दुश्मन के दो और विमान आपके पीछे हैं। अपने विमान को नीचे लाइए।
1: सर अब दुश्मन का जहाज बिल्कुल मेरे निशाने पर है। उसे तो गिराकर ही दम लूंगा।
3: ऐसा कहकर फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने एक पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाकर उड़ा दिया और एक बार फिर अपनी रफ्तार और कलाबाजियों से पाकिस्तानी विमानों को उलझा दिया। इसी बीच मौका देखकर उन्होंने एक और पाकिस्तानी विमान को निशाना बनाया और उसे मलबे में बदल दिया। आग की लपटों से घिरा वो विमान नीचे आ गिरा।
4: अब दुश्मन के चार विमान बचे थे। दो विमानों को गिराने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने बचे हुए चार विमानों को खदेड़ना शुरू किया। घबराकर दुश्मन के जहाज वापस लौटने लगे।
1: ओए कायरो, ओए भागते कहाँ हो? तो सामने आओ, आओ मुकाबला करो।
3: इसी बीच उनका विमान एक बार फिर से दुश्मनों के निशाने पर आ गया और उसका एक इंजन खराब हो गया। दुश्मनों की गोलियों से उनका जहाज अब जर्जर हो चुका था और गिरने लगा था।
4: कुछ क्षणों बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का अंतिम रेडियो संदेश फिर सुनाई दिया।
1: कंट्रोल रूम, दिस इज सेखों 102। मेरा जेट भी अब दुश्मन के निशाने पर आ चुका है सर। अब आप लोग अगला मोर्चा संभालिए। अलविदा सर, शायद अब मुलाकात ना हो। जय हिंद।
3: और अपना आखिरी संदेश देने के बाद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों देश के लिए शहीद हो गए।
4: उनकी इस असाधारण वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रशस्ति पत्र के कुछ अंश इस प्रकार से हैं।
3: हालांकि ये बराबरी की टक्कर नहीं थी, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अकेले ही दुश्मनों को पूरी टक्कर दी और वो वीर गति को प्राप्त हो गए।

0: फ्लाइंग ऑफिसर सेखों परमवीर चक्र का सम्मान पाने वाले भारतीय वायुसेना के एकमात्र सैनिक हैं। शहादत के समय उनकी आयु मात्र 26 वर्ष थी। भारत के पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध की धारा भारत के पक्ष में मोड़ देने वाले इस वीर सैनिक को कृतज्ञ राष्ट्र पूरी श्रद्धा से नमन करता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
1: चेतना,
2: अर्शद,
1: सौम्या,
2: प्रसून
1: और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सरयुग यादव के साथ
2: विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
0: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
2: 0542227658
0: नंबर, एक बार फिर नोट करें

0: 8।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें,
2: 0542227658।
0: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं नेहा चैटर्जी, इनकी आवाज में पहले आपको सुनवा रहे हैं भजन।

अभी आप सुन रहे थे भजन, रचना मलूक दास की थी। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में कलाकार हैं नेहा चैटर्जी। इन्हीं की आवाज में आप सुनिए ये गीत, रचना है जयशंकर प्रसाद की।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थी नेहा चैटर्जी। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे गायन। कलाकार है देवाशीष दे, राग है मदमाद सारंग। आपके साथ संगतकार तबले पर किशोर कुमार मिश्र और हारमोनियम पर जमुना वल्लभ।

0: अभी आप सुन रहे थे देवाशीष दे का गायन। राग था मदमाद सारंग, तबला संगति किशोर कुमार मिश्र की और हारमोनियम पर संगतकार थे जमुना वल्लभ। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। हिंदी समाचार सुनिए दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। जापान एशियाई खेलों में भारत ने आज तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तीरंदाजी में साहिल जाधव, कुशल दलाल और

0: गणेश मणिरत्नम की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में चीन को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। साहिल जाधव और चिकिता तनिपार्थी की मिक्स्ड कंपाउंड टीम ने भी फाइनल में शूट ऑफ में कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इस जीत के साथ भारत ने 2028 ओलंपिक के लिए कोटा भी हासिल कर लिया है। उधर ज्योति सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी और प्रतिका प्रदीप की महिला कंपाउंड टीम ने स्वर्ण पदक जीता। निशानेबाजी में नीरू ढांडा और काइनन चेनाई की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। मुक्केबाजी में महिलाओं के 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रिया घांगस और कपिल पोखरिया ने पुरुषों के 90 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 28 कांस्य सहित कुल 59 पदकों के साथ सातवें स्थान पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वर्ण पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कतर के व्यापारिक संघ से भारत में व्यापार और निवेश में साझेदारी की संभावनाओं को सक्रिय रूप से तलाशने की अपील की है। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने का आह्वान किया। दोहा में कतर व्यापारिक संघ की बिजनेस राउंड टेबल बैठक में उन्होंने भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि, बढ़ते निवेश और वित्त वर्ष 2025-26 में 94 अरब 50 करोड़ डॉलर से अधिक के रिकॉर्ड सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। अमेरिका में एक गोलमेज बैठक में श्री गोयल ने भारत के बढ़ते औद्योगिक आधार और कुशल कार्यबल का उल्लेख किया। उन्होंने अमेरिका की कंपनियों से भारत में निवेश बढ़ाने, छोटे और मध्यम उद्योगों के साथ साझेदारी करने और आधुनिक विनिर्माण में मिलकर निवेश करने का आग्रह किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज अमेरिका में G20 देशों के मंत्रियों के साथ बैठक में शामिल होंगे। ये बैठक अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन गीर के निमंत्रण पर हो रही है। यात्रा के दौरान श्री गोयल अपने समकक्ष के साथ भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सरकार ने यात्री वाहनों के लिए नया कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी नियम अधिसूचित किया है। ये किसी वाहन कंपनी द्वारा बनाए गए सभी यात्री वाहनों की औसत ईंधन खपत और दक्षता से जुड़ा मानक है। ये नए नियम मौजूदा कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का स्थान लेंगे। नए नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल से लागू होंगे और 31 मार्च 2032 तक प्रभावी रहेंगे। ये भारत में बिक्री के लिए बनाए या आयात किए जाने वाले नए यात्री वाहनों पर लागू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सही और अद्यतन मतदाता सूची लोकतंत्र की आत्मा है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने मतदाता सूची में अनियमितताओं को लेकर विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाया।
1: और वोटर लिस्ट में गलत नाम जुड़े तो लोकतंत्र ही मर जाएगा। आपको क्या आपत्ति अगर कोई इस दुनिया में है ही नहीं उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाए? कहीं डुप्लीकेशन है गांव में भी नाम, शहर में भी नाम, अगर नाम एक जगह कट जाए तो आपको दिक्कत क्या है? कोई देश का नागरिक ही नहीं है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में क्यों जोड़ना चाहिए? पवित्र लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट शुद्ध होना ही चाहिए।
0: भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें नौसेना के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ थल सेना प्रमुख और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष भी मौजूद हैं। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने समुद्री सुरक्षा वातावरण और भारतीय नौसेना की परिचालन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने तेजी से बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कार्रवाई और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता बनाए रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले में एक आतंकवादी को मार गिराया है। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया। आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान स्थित लश्करे तैयबा के आतंकी मोहम्मद आसिफ उर्फ हाशिम मूसा के रूप में हुई है। गृहमंत्री अमित शाह आज जालंधर से नशा मुक्त पंजाब यात्राओं को रवाना करेंगे। इन यात्राओं का उद्देश्य पंजाब में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन में बदलना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 407 अंक बढ़कर 72,936 जबकि निफ्टी 58 अंक की वृद्धि के साथ 22,774 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले कार्यक्रम विवरण में आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। जापान में आयोजित एशियन गेम्स 2000

26 में आज की झलकियां आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण होगा रात्रि 10:25 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार मनहर उदास होंगे। समय होगा रात्रि 8 बजे का। आज शाम 7 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी कार्यक्रम। शाम 6:30 पर किसान भाई सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम, जिसमें वैज्ञानिक ढंग से सब्जियों का रखरखाव, इस विषय पर डॉक्टर श्रेया पवार से सतीश कुमार यादव की बातचीत के साथ ही किसान भाइयों को सुनवाएंगे लोकगीत। कलाकार गीतांजलि मौर्य इन्हीं के गाये लोकगीत आप दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुन सकते हैं। युवा साथी अपना युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे शाम 5:15 पर, जिसमें होगी आज की बात, यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और मार्गदर्शन के अंतर्गत वैकल्पिक विवाद समाधान और रोजगार की संभावनाएं, इस विषय पर युवा साथियों का मार्गदर्शन करेंगे एडवोकेट अनुपम द्विवेदी। बहने अपना गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगे दिन 1:15 पर। कुछ बातें कुछ गीत सुनिएगा दिन 2:30 पर। फिल्म संगीत शाम 5 बजे और शाम 6:10 पर। रसरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:31 पर और रस माधुरी का प्रसारण रात्रि 8:15 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार कौशल्या, जिनके पिता का नाम आलोक है, ये निवासिनी है ग्राम रामपुर कोराहा थाना जिगना जनपद मिर्जापुर की। कौशल्या 6 अगस्त 2026 से लापता है। इनके बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार, इनकी उम्र है 23 वर्ष, चेहरा गोल, रंग गोरा है और इनकी लंबाई है 5 फिट। इनके बारे में विशेष बात ये कि इनके बाएं भौं पर कटे का निशान है। अगर आपको कौशल्या के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो तो आप थानाध्यक्ष जिगना जनपद मिर्जापुर को सूचित कर सकते हैं और सूचना आप फोन पर भी दे सकते हैं। नंबर है 7054298100।